ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सवेरे की 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ा

0: क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने श्री रामचरित मानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 7। मुख्य गायक स्वर है सविता देवी का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं। जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दम भी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं, कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस, एपिसोड संख्या थी 7। मुख्य गायक स्वर था सविता देवी का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रहना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अलका, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और साथियों का गाया। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल का गाया ये भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे मिले जुले स्वरों में। वंदन कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया ये भक्ति गीत।

इस भक्ति गीत के साथ आज का वंदन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं घर फिल्म का गीत। गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

दूसरा आदमी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

आइए सुनते हैं नदिया के पार, इस फिल्म का ये गीत जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजों में। संगीत और गीत लिखा है रविंद्र जैन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में होती है ढेर सारी बातें और सुनाए जाते हैं आपको प्यारे प्यारे से गीत। आज के इस कार्यक्रम को

लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, सूरज की पहली पहली किरण तो क्या कहें, क्योंकि सूरज तो कभी उदय हो चुका है। तो सूरज की किरणों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक हम बातें करेंगे दिल की, जिंदगी की और उन विचारों की जो दिन को खूबसूरत बना दे, क्योंकि हर नई सुबह कहती है कि खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा। छोटे छोटे प्रयास करते रहे और यही छोटे प्रयास आगे बड़े बदलाव लाते रहेंगे। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मंजिल बहुत ही अच्छी होगी। चलिए सुनते हैं अगला गीत और करेंगे और भी ढेर सारी बातें।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ चाय का नहीं होता, बल्कि सोच बदलने का भी होता है। जिस तरह सूरज हर दिन नया उगता है, उसी तरह इंसान भी हर सुबह खुद को नया बना सकता है। और दोस्तों, कभी कभी हम मौसम को भी कोसते रहते हैं, जैसे कि अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हम यही कहते रहते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। लेकिन राजस्थान की मिट्टी हमें सिखाती है, तपती रेत में भी मुस्कुराना। जी हाँ, आज नौतपा का दूसरा दिन है। नौतपा यानी वो नौ दिन जब सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ धरती पर होता है। और मान्यता है कि ये दिन जितने तपते हैं, मानसून उतना ही अच्छा होता है। राजस्थान में तो नौतपा सिर्फ मौसम नहीं, संस्कृति का भी हिस्सा है। और बचपन में दादी नानी भी कहती थी कि नौतपा की धूप खेतों को ताकत देती है। और कहते भी हैं कि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, रास्ते पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। दोस्तों, तापमान तो लगातार बढ़ ही रहा है और साथ में नौतपा भी चल रहा है, और हमारे पश्चिमी इलाके में तो हीट वेव का अलर्ट जारी पहले से ही था और नौतपा ने गर्मी को और बढ़ा दिया है। तो इस गर्मी में अपना ख्याल ज़रूर रखें, ज़्यादा पानी पिएं, पानी के साथ छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी ज़रूर लें। अपने बॉडी में बिल्कुल भी पानी की कमी ना होने दें, जितना ज़रूरी हो उतना घर के अंदर रहें। कोई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर जाएं, से ढक कर रखें अपने आप को, सूरज की रोशनी से बचाएं, हल्का भोजन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक सोच रहती है।

दोस्त, ऐसे में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और अब हम बात करते हैं हमारी अपनी सूर्य नगरी जोधपुर की, जहां गर्म हवाएं भी शान से चलती है। दोस्तों, जोधपुर सिर्फ किलों और हवेलियों का शहर नहीं, ये संस्कृति, आध्यात्म और यात्राओं का शहर भी है। आज हम बात करेंगे भोगीशैन यात्रा की, जो कि कल शुरू हो चुकी है। ये यात्रा सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव है। जब इंसान शहर की भागदौड़ से निकलकर प्रकृति और आस्था के करीब जाता है, तो मन को एक अलग ही शांति होती है। जोधपुर की पहाड़ियाँ, रेगिस्तान की हवाएं और सुबह सुबह मंदिर की घंटियाँ, ये सब मिलकर मन को ऊर्जा देते हैं। और आज है यात्रा का दूसरा दिन और पड़ाव है चौपासनी। और दोस्तों, कहते भी हैं कि यात्राएं सिर्फ पैरों से नहीं, दिल और अनुभवों से पूरी होती है। और यह भोगीशैन यात्रा हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।

तो दोस्तों, आज की सुबह हमने अच्छे विचारों की बात की, नौतपा की तपिश में जिंदगी की सीख ढूंढी और जोधपुर की भोगशैल यात्रा के जरिए मन की शांति महसूस की। तो दोस्तों, आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी।

0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर वन में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड

0: संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा

0: सभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डो से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान

0: में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed.

सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। नई सुबह का नया है रंग, नए सपने और नई है उमंग, नए इरादे और नई है जंग, बढ़ते रहे हम संग संग। जी हाँ दोस्तों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का आकाशवाणी।

0: रानी के जोधपुर केंद्र पर।
1: और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में भी आपका स्वागत है। अब मिलवाते हैं दोस्तों आपको नमस्कार की टीम से। नमस्कार की टीम में आज हमारा साथ दे रहे हैं ट्रांसमीटर से पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। एचपीटी कंसोल पर उद्घोषिका साथ दे रही हैं सोनिया देवड़ा।

0: वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका निशिका बुराणा। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजय व्यास की और संयोजन राजेश लामरोड का। नमस्कार की पूरी टीम के साथ सूत्रधार के रूप में मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं हूं हेमलता। तो दोस्तों, आज के नमस्कार कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे कई सारी जानकारियां, कई सारी बातें और भी कुछ विशेष हैं। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल दोस्तों, एक बार जो पल हमारे हाथ से निकल जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। तो जो ज़िंदगी है वो हमें यही कहती है कि इसी पल में जीन ले, क्योंकि इस पल में जो खुलकर जीता है वही असली जीवन जी पाता है। और जीवन की सच्चाई भी यही है कि जो भी है वो इसी पल में है, ना आगे ना पीछे।
1: जी हाँ दोस्तों, कोई सवाल से खुश है, कोई जवाब से खुश है, कोई सवाल से खुश है, कोई जवाब से खुश है, कोई तन्हा तो कोई जंजाल में खुश है, खुश नसीब तो वो है जो हर हाल में खुश है। बिल्कुल दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी संतोष में छिपी होती है। इसलिए हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जीवन की हर परिस्थिति को पॉजिटिविटी के साथ जीने की।

दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, इसलिए नहीं कि जिंदगी में खुशियां ज्यादा हैं, बल्कि मुस्कुराहट इसलिए कि जिंदगी से न हारने का वादा है। हंसते मुस्कुराते रहने से मुस्कुराहट किसी की खुशी का कारण बन सकती है, और फिर रोने से तो आँख के आंसू भी पराए हो जाते हैं, मगर मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। तो हर पल मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू करने के लिए अगर ये सोचा जाए कि एक सेकंड बाद शुरू करूंगा, तो समझ लीजिए ऐसा विचार आना भी आलस्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह बात समझकर कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं आज से अभी से शुरू करने का नैतिक संकल्प ले और पूरे मनोयोग से लग जाइए उस काम में, फिर देखिए परिणाम भी कितने सकारात्मक मिलते हैं।

0: दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना लगते ही उत्तर और मध्य भारत में सूरज के जो तेवर हैं वो तीखे होने लगते हैं, लेकिन इस तपिश का जो सबसे रौद्र रूप है वो नवतपा के दौरान ही देखने को मिलता है। और इस साल यानी 2026 में 25 मई से यानी कल से नवतपा की शुरुआत भी हो चुकी है, जो आने वाली 2 जून तक जारी रहेगी। और इन 9 दिनों में जो गर्मी है वो अपने चरम पर होती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, नौ तपा यानी कि नव तपा गर्मी के उन 9 दिनों को कहा जाता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक निकट प्रभाव में महसूस होता है और तापमान बहुत बढ़ जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह समय तब माना जाता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। सामान्यतः यह मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रारंभ तक रहता है। और लोक मान्यता की अगर बात करें तो यदि इन दिनों अच्छी गर्मी पड़े तो वर्षा ऋतु संतुलित और अच्छी होती है। और अगर हमारे जो ग्रामीण भारत है उसकी बात करें तो नवतपा को केवल गर्मी नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन का समय माना जाता है। कहा जाता है जेठ तपे तो सावन बरसे, यानी कि जेठ में जितनी अच्छी गर्मी पड़ेगी वर्षा उतनी ही अच्छी होने की संभावना मानी जाती है। तो दोस्तों, इस तपती गर्मी में हम अपने आप को किस तरह से बचाएं ये भी बहुत जरूरी प्रश्न बनता है। तो कहा जा रहा है कि दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले प्यास लगे या ना लगे।
0: बिल्कुल। और सूती और ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, हल्का भोजन करें और इस मौसम में गरिष्ठ भोजन तेल के भोजन करने से बचें। और मौसमी फलों को तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सब खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। और कहते हैं ना कि ऐसे में ही समझदारी है कि हम जो प्रकृति के इस नियम का सम्मान भी करें और पूरी सावधानी भी बरतें, सतर्क भी रहें और खुद को सुरक्षित भी रखें।
1: बिल्कुल दोस्तों, और स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को बाहर ना निकले ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और समय समय पर छाछ, लस्सी, बेल का शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी जैसे पेय परिवार में स्वयं भी पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। यही इसका खास बचाव है।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने

भोपाल हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण

0: अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉ नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आम से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
0: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
3: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

0: वैरी शर्मा आकाशवाणी समाचार करौली।
1: अलवर के सरिस्कार टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने दो शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिनी और 26 शावक शामिल है। नए शावकों की नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर प्वाइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार पुनः हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार में। दोस्तों, आज का नमस्कार कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम आपके दो साथी। मैं हेमलता और मेरे साथ हैं
3: और मैं हूं चंद्रकला सुथार।
2: तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के दिन का इतिहास किन किन बातों का गवाह है।

0: 1747 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ आज ही के दिन।
1: ২০১৪ में नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। इस समारोह में इतिहास में पहली बार सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था।
0: ১৯৫৫ में चार्ल्स ईवांस ने दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय प्राप्त की थी आज ही के दिन, जिसकी ऊंचाई 8,585 मीटर है।
1: ১৯৬৫ में कैप्टन एमएस कोहली के नेतृत्व में एक भारतीय दल ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था और इस अभियान की खास बात यह थी कि इस एक ही मिशन में रिकॉर्ड 9 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट फतह किया था।
0: ২৬ মে ১৯৯৯ का दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने PSLV-C2 रॉकेट के माध्यम से भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। वह ऐतिहासिक मिशन भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में प्रवेश का एक बड़ा मील का पत्थर था।
1: और 1897

0: में आयरिश लेखक ब्राम स्टोकर का मशहूर हॉरर उपन्यास ड्रैकुला पहली बार लंदन के बाजारों में बिकने के लिए आया था। इस किरदार ने आगे चलकर वैश्विक सिनेमा और साहित्य पर गहरी छाप छोड़ी थी।
1: उन्नीस सौ उनहत्तर में अपोलो 10 पृथ्वी पर आने वाली सभी घटकों के सफल 8 दिवसीय परीक्षण के बाद वापस लौटा था आज ही के दिन।
0: उन्नीस सौ अट्ठाईस में नीदरलैंड्स में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और इसी ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक भी जीता था और दुनिया ने मेजर ध्यानचंद का जादू देखा था।
1: और 1972 में विलंड्रा नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया था आज ही के दिन।
0: उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था और भारतीय सेना की मदद के लिए वायुसेना ने मिग 21, मिग 27 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठियों के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए थे। ये थी इतिहास की जानकारी। आइए बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत की ओर।

0: दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार को सेगमेंट होता है आओ जाने खेल। और मंगलवार सेगमेंट आओ जाने खेल में आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन की गति का उत्सव यानी मैराथन के बारे में। जब सैकड़ों हजारों लोग दोस्तों एक साथ एक ही दिशा में अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो वह नज़ारा सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं रह जाता, बल्कि वह जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीने का एक उत्सव बन जाता है। आज मैराथन दुनिया भर में स्वास्थ्य, जागरूकता, सामाजिक संदेश और खेल की भावना के लिए आयोजित की जाती है। एक आम दौड़ और मैराथन में बहुत बड़ा फर्क होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ होती है जो कि केवल एक दौड़ नहीं बल्कि साहस, धैर्य और इतिहास से जुड़ी एक प्रेरक परंपरा है। इसका संबंध प्राचीन यूनान ग्रीस से माना जाता है। मैराथन शब्द ग्रीस के एक स्थान मैराथन से लिया गया है। 490 ईसा पूर्व में यूनान और फारस के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ मैराथन कहा जाता है। कहा जाता है कि यूनानी सैनिक और संदेशवाहक फेडिप्रेस युद्ध के विजय का समाचार देने के लिए मैराथन नगर से राजधानी एथेंस तक लगभग 40 किलोमीटर दौड़े। उन्होंने पहुंचकर कहा, हम जीत गए, ये संदेश उन्होंने दिया और फिर थक कर गिर पड़े। इसी घटना की स्मृति के बाद से मैराथन दौड़ की परंपरा शुरू हुई। आधुनिक मैराथन का विचार फ्रांसीसी विद्वान मिचेल ब्रेयल ने दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राचीन यूनानी घटना की याद में एक विशेष दौड़ आयोजित की जाए और इसके बाद वर्ष 1896 से ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए पहले आधुनिक समर ओलंपिक्स में पहली आधिकारिक मैराथन दौड़ आयोजित हुई। उस पहली आधुनिक मैराथन में विजेता यूनान के धावक स्पाइरिडोलोस ने बने उनकी जीत ने पूरे ग्रीस में उत्साह पैदा कर दिया और मैराथन विश्व भर में लोकप्रिय होने लगी। शुरुआत में मैराथन की दूरी निश्चित नहीं थी, अलग अलग प्रतियोगिताओं में दूरी थोड़ी बदलती रहती थी। 1908 के समर ओलंपिक्स में इंग्लैंड के शाही परिवार की सुविधा के अनुसार दौड़ की दूरी बढ़ाई गई ताकि दौड़ की शुरुआत जो है वो विंडसर क्रेस्टुले से हो और अंत ओलंपिक स्टेडियम के शाही बॉक्स के सामने हो। इस प्रकार दूरी 42.195 किलोमीटर बनी और बाद में 1921 में इसे आधिकारिक मानक घोषित कर दिया गया। समय के साथ मैराथन केवल खेल नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गई। अब मैराथन फिटनेस का प्रतीक है, मानसिक शक्ति, धैर्य की परीक्षा मानी जाती है। सामाजिक जागरूकता और चैरिटी से भी जुड़ चुकी है मैराथन। बहुत से लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की खुशी के लिए मैराथन में भाग लेते हैं।
0: और किसी भी शहर में होने वाली मैराथन में हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग और हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ दौड़ते हैं। दोस्तों, सड़कों पर खड़े अजनबी लोग जब धावकों का हौसला बढ़ाते हैं तो वह इंसानियत और आपसी जुड़ाव का भी एक खूबसूरत उदाहरण भी तो होता है। और मैराथन हमें जीवन जीने का एक बेहद खूबसूरत फलसफा दिखाती है। जिंदगी भी तो एक मैराथन ही है दोस्तों, लंबी उतार चढ़ाव से भरी और इम्तिहान लेने वाली। यहाँ हर कोई अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है और असली मकसद किसी दूसरे को हराना नहीं।

बल्कि अपनी खुद की पिछली सीमाओं को पार करना है। जो इंसान मैराथन की फिनिश लाइन को पार कर लेता है, वह सिर्फ एक रेस पूरी नहीं करता दोस्तों, बल्कि वह खुद को एक नए, अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी रूप से मिलता है। सच कहा गया है कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो एक मील दौड़िए, लेकिन अगर आप एक नया जीवन महसूस करना चाहते हैं तो मैराथन दौड़िए। और दोस्तों, मैराथन में एक ख़ास बात ये भी तो होती है कि इसमें हर 2-3 किलोमीटर पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, जिसे डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशन स्टेशन भी कहा जाता है। ये थी मैराथन खेल के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, अचानक आपको लग रहा होगा कि नमस्कार कार्यक्रम में ये अलगोजा कहाँ खेतों में बजने लग गया। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज नमस्कार कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष रूप से फोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक श्री तगाराम जी भील साहब। थार की मिट्टी की वो सुरीली पहचान जिनकी अलगोजा की धुनों ने रेगिस्तान की हवाओं को भी संगीत बना दिया। जैसलमेर के मूल सागर गांव से निकलकर लोक संगीत को विश्व पटल तक पहुंचाने वाले और हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुए सुप्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार तगाराम जी, बहुत जी, बहुत बधाई आपको।
1: आपको भी बहुत बहुत, सब हमारे भारत और सभी भारतवासियों को, सभी हमारे देश के, सभी हमारे देश के जो युवा है, हमारे सभी समाज के जो लोग हैं, सभी को हमने मेरी तरफ से बधाई देता हूँ बहुत बहुत।
0: बिल्कुल तगाराम जी, ये गौरव की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए, कि आज हमारी इस स्वर्ण नगरी की मिट्टी से निकला हुआ एक हीरा, एक कलाकार, हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोक गीत हैं, हमारी जो लोक धुने हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाकर स्थापित किया है। इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े हैं।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तगाराम जी, जब हुनर को सच्ची लगन का साथ मिलता है तो वो इतिहास रच देता है। आज हमारे राजस्थान और पूरे देश के लिए बेहद गर्व का पल है। आपको कैसा लग रहा है ये सम्मान पाकर?
1: जी, मैंने तो जब अलगुजा बचपन से शुरू किया था तब ये पता ही नहीं था कि हम मैं कलाकार बनूंगा, यहाँ तक जाऊंगा। लेकिन ये जो उजरत ने और सरस्वती माँ ने, जो भगवान ने हमारे को ये मौका दिया है, तो मैं तो बहुत ही बहुत बहुत खुश हूँ। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेहनत तो मैंने किया है, लेकिन आगे पहुँचाने वाले भी, जैसे पर्यटन विभाग है, रेडियो स्टेशन वाले है, सभी हमारे दूरदर्शन वाले, जो भी ये पत्रकार है, जो भी मीडिया वाले हैं, सब सबका साथ मिला है, तब जाके मुझे ये स्थान मिला है ना।
0: तो मूल सागर का से निकला ये सफर अंतरराष्ट्रीय पटल तक कैसे पहुंचा, ये यात्रा कैसी रही, और अलगोजा जैसा एक कठिन वाद्य ये जो आपने चुना है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: ये प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी बजा रहे थे, तो मैं बचपन में जब 6-7 साल की उम्र में था, तभी वो उनके पास बैठा हुआ सुन रहा था, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं, मेरे को बकरी के साथ भेज देते थे बकरी चराने के लिए, तो मैं वो अलगुजा चुपचाप से उठा करके बकरी के साथ दिन भर खेलते बजाते ऐसा सीख लिया था।
0: बहुत सुंदर।
2: और तगाराम जी, किस तरह का ये वाद्य यंत्र होता है जो दूसरे वाद्य यंत्रों से अलग होता है?
1: जी, ये दो बांसुरी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो राजस्थान के अलगुजे वो छोटे छोटे होते हैं, वो जैसे वो एक धुन में ही बजता है, उसमें कोई क्लासिकल नहीं होती है। अच्छा। मैं अलगुजा बजाता हूँ, ये जो पाकिस्तान सिंध में लोग बजाते हैं, वहाँ पर बलोचिस्तान में जैसे वहाँ बजाते हैं लोग, वहाँ का ये साज है। तो यहाँ पर हम पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, तब से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो हमारे कुछ लोग उधर रहते थे, इधर रहते, तो हम उस टाइम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने वो सीखा था, वो तब मेरे को मिला ये।
2: अच्छा।
1: तो इसको अभी यहाँ पर बनता ही नहीं है, जो ज्यादातर उधर ही बनता है, बलोचिस्तान में बनता है, तो यहाँ मैंने बनाने का भी काम कर दिया है। मैं खुद लोगों को सिखाता भी हूँ, निर्माण करके बना के लोगों को सेल भी करता हूँ आगे, और आगे से आगे देश, हर पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग जिसको चाहिए वो मेरे पास आते हैं सीखने के लिए और लेके भी जाते हैं।
0: कितनी खूबसूरत

0: खूबसूरत बात है तगाराम जी कि आपने इस जो वाद्य यंत्र है इसको निर्माण करना भी सीखा है, और आप हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी लोक की जो खुशबू है उसको आगे युवा पीढ़ी तक भी बढ़ा रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने सर ली है इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और इस सम्मान के बाद आपको क्या लगता है कितनी और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है?
1: बस इसके सम्मान के बाद में मेरी एकता ही है कि मैं हर हमारे देश के नागरिकों को, हमारे नई पीढ़ी के जो युवा है सबको कहना चाहूंगा कि मेरी तरह जैसे मैंने अपने अच्छी पकड़ से करके जो सीखा, इसी तरह से आप है ना, आप बिल्कुल हमारी तरह सही, आप भी आगे बढ़ो और सीखो, इसको कला को आगे बढ़ाएं। और भारत सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार करता हूँ। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया है, और सब लोगों ने मुझे जो सहयोग किया उन्हीं का सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: बिल्कुल, माननीय राष्ट्रपति के हाथों से इतना बड़ा सम्मान कला और साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी को मिले तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरव की बात होती है। और
1: जी।
0: आपने अब तक बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, कोई ऐसा यादगार मंच है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है?
1: हाँ, जब मैंने शुरुआत में जब किया था तब पहले पहली बार मैं स्टेज पे गया था जैसलमेर में, गोपा चौक में, तब 15 अगस्त का प्रोग्राम था।
0: जी
1: और हमारे हमारे जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभुदान जी रतन हुए नेहरू युवा केंद्र का वहाँ प्रोग्राम करवाया था। तो
0: जी
1: उस टाइम एक अकबर खान जी मांगनियार है, और उन लोगों ने मुझे है ना पहली बार स्टेज दिया 1981 में, 81 में।
0: जी
1: तो उसके बाद में मेरे को भी थोड़ा आगे बजाने की रुचि हुई, और उसके बाद में फिर रेडियो स्टेशन जोधपुर वालों ने बुलाया मुझे, सब जगह जयपुर तक, आगे दिल्ली तक भी पहुंचा मैं इसी तरह से करके। और हमारे उसी टाइम मैं पत्थरों में मजदूरी भी करता था और बकरियां भी चराता था, दोनों काम करता था। तो
2: जी तगाराम
1: मैं
2: जी, भारत की तो ये राजस्थान की भारत की बात है, लेकिन भारत से बाहर भी आपने विदेशों में जाकर भी इस कला को प्रस्तुत किया है, तो वो कैसा
1: हाँ,
2: अनुभव रहा होगा आपका?
1: वो बहुत अच्छा रहा। हमारे पहली पहली यात्रा हमारे राजस्थान टूरिज्म वालों ने करवाया था जैसलमेर से, तो 1996 में ये किया था प्रोग्राम, फ्रांस में पहली बार नॉन फेस्टिवल में करवाया था। उसके बाद में हमारी यात्रा शुरू हुई, तो मैं 35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ,
2: क्या बात है।
1: अमेरिका अमेरिका से लेके जापान तक, जो जो भी है सब जगह मैंने, जो इतने मेरे को देशों का नाम याद नहीं है, लेकिन यूरोप का 15 देश, यूरोप का, और बाकी रूस में भी किया हमने, क्रोशिया में भी किया है, हमारे को पुरस्कार भी मिला, अमेरिका में 4 अवार्ड ले चुका हूँ मैं। तो इसलिए मैं सब जगह जहाँ जहाँ गया हूँ मेरी बहुत इसे कदर की है लोगों ने।
0: तगाराम जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं कि अब तक आपने बहुत सारे सम्मान अर्जित किए हैं। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपका वाद्य यंत्र आपके साथ है?
1: हाँ, अभी भी साथ में ही है।
0: तो क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी कोई धुन सुना सकते हैं प्लीज?
1: हाँ, मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा बजा कर सुनाऊंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि आप वो धुन बजाएं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो दोस्तों, फोन लाइन के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं पद्मश्री श्री तगाराम जी भील साहब, जो हमारी मरु माटी की लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर गए अपने वाद्य यंत्र अलगोजा के माध्यम से, और वो अब हमें अलगोजा की धुन सुनाने जा रहे हैं।

0: नहीं यार, तो बस के अंदर बैठे हुए फिर भी आपको सुना रहा हूँ मैं।
1: बहुत
0: हाँ जी,
1: सुंदर, बहुत
0: बहुत
1: सुंदर
0: खूबसूरत।
1: सर, ये वो धुन है शायद जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अलगू जी की धुन आकाशवाणी पर।
0: जी, वो पणियारी की धुन है वो।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इसकी एक खास,
2: जी इसकी एक खास बात ये भी है कि एक बार सुन ले तो इस धुन को भूले नहीं, ऐसी इसकी
0: जी।
2: धुन है।

0: और आवाज है।
1: जी
0: हाँ तगाराम जी, आखिर में हमारे उन तमाम श्रोताओं और कलाकारों के लिए, आपको जो सुन रहे हैं इस वक्त, उनको
1: हाँ
0: आपकी तरफ से, वो भी आपकी तरह अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ बस मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग सीखे हैं और निर्माण करें, बनाना सीखे, इसको आगे बढ़ाएं और देश का नाम करें, खुद का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें,
0: जी
1: यही
0: हमारा जो
1: चाहता हूँ
0: रंगरूट
1: मैं।
0: राजस्थान है,
1: हाँ,
0: इसकी लोक परंपराओं को लोग सीखें, जानें, समझें और उसे आगे लेकर जाएं।
1: और भारत सरकार से मेरा यही आग्रह है कि जो ये साज है जो लुप्त होता जा रहा है, इनकी बजाने वाले भी कम है, बनाने वाले भी कम है, तो मुझे भी थोड़ा इनका भारत सरकार से सपोर्ट चाहिए ताकि मैं कुछ आगे केंद्र बना करके चला करके लोगों को सिखा सकूं और आगे बढ़ा सकूं।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपकी सोच बहुत अच्छी है और ईश्वर और भारत सरकार जरूर आपकी बात सुनेंगे और इस आपकी बात को आगे भी बढ़ाएंगे। तगाराम जी, आप हमसे जुड़े और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें साझा की, एक बार पुनः आपको हम पद्मश्री सम्मान जो आपको मिला है उसके लिए देते हैं ढेर सारी बधाइयाँ, और साथ ही अपने पूरे राजस्थान को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं। आपने अपना अनमोल समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो
0: जी
1: अभी मैंने अलगू जी सुनाई, ये अलगू जी मैं वहाँ प्रधानमंत्री जो म्यूजियम है उसमें मैं ये भेंट करना चाहता हूँ, वहीं
0: बहुत
1: अभी
0: बढ़िया सर,
1: करूँगा।
0: बहुत बढ़िया
1: जी,
0: या
1: जी
0: आपका
1: आपका
0: आपको हम
1: बहुत
0: देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद
0: तो
1: जी, जी
0: श्रोताओं, अभी हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे पद्मश्री तगा राम भील जी, जैसलमेर से जो आते हैं, और अलगोजा वाद्य यंत्र को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति दिलवाई है, तो हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि उन्हें आज पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: अब कर लेते हैं एक खास बात। आज खास बात में हम चर्चा कर रहे हैं 16वीं जनगणना के बारे में।
1: जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस बार जनगणना हाईटेक है और मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी की दोबारा गिनती हो सके। आज़ादी के बाद पहली बार जाति का डेटा इसमें जुटाया जाएगा। 1931 में ऐसा हुआ था पहली बार। जनगणना का डेटा गोपनीय रहेगा और आरटीआई के दायरे से बाहर होगा। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा
0: और
1: दोस्तों।
0: खास बात है दोस्तों कि अधिकृत अधिकारी ही डेटा देख सकेंगे। इसमें डेटा लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराएं लगेंगी और इस जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया जो और पंजीकरण की जो तारीख है वो 1 से 15 मई रखी गई थी इसमें, और यह 2 चरणों में हो रही है। पहली हाउस लिस्टिंग है जो कि 16 मई से 14 जून तक चलेगी, और दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना है जो फरवरी 2027 में होगी। अभी पहला चरण हाउस लिस्टिंग चल रहा है। पहले चरण में 33 विशिष्ट प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, जिन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहला है मकान और उसकी बनावट, उसके बारे में पूछा जाएगा डिटेल में, और परिवार और मुखिया की जानकारी आपको देनी होगी। सही सही जानकारी आप इसमें भर सकते हैं, और सुविधाएं और संसाधन इसमें बताने होंगे। आपके पास जो जो सुविधाएं हैं, जो जो संसाधन आप उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। डिजिटल उपकरण और वाहन, उनके बारे में भी आपको उनको बताना होगा। इन सब की विस्तार से आपको जानकारी देनी होगी दोस्तों। कर्मचारी आपसे 3 बातें नहीं पूछेंगे। कौन कौन सी? एक तो आमदनी के बारे में, महीने की जो कमाई है, बैंक बैलेंस है, उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दस्तावेज है, आधार पैन कार्ड है, कोई भी अन्य जो पहचान पत्र है उसके दिखाने का कोई दबाव आप पर नहीं बनाया जाएगा। बैंक डिटेल है, बैंक खाता नंबर है, ओटीपी जैसे जो निजी विवरण होते हैं उनके बारे में कर्मचारी आपसे नहीं पूछेंगे। और अगर आपने स्व जनगणना का फॉर्म भर दिया है तो जब जनगणना कर्मी आपके घर आए तो उन्हें ऐसी आईडी दिखा दें। मैच होते ही डेटा वेरीफाई हो जाएगा और स्वीकार हो जाएगा। दोस्तों एक खास बात और ये भी है कि जब भी कर्मचारी आपके घर आए तो उनकी भी आईडी आप चेक करें, वेरीफाई करें और विनम्रता से उनके साथ व्यवहार करें। यही थी आज की खास बात।

दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है और आजकल हमारे लिए एक आम समस्या है ये। लेकिन सही आदतों से हम इसे काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं और उसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ आसान और असरदार तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी खाती है हमारी। ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखना होगा इसके लिए हमें, और ब्राइटनेस को कम करना होगा। बैकग्राउंड ऐप जो होती हैं उन्हें बंद करना होता है। जो ऐप्स आप

0: इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर दें। खासकर सोशल मीडिया और गेम्स बैकग्राउंड में बैटरी बहुत खर्च करते हैं दोस्तों। लोकेशन और ब्लूटूथ ज़रूरत पर ही चालू रखें। GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई अगर लगातार ऑन रहेंगे तो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। बैटरी सेवर मोड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोन में मौजूद बैटरी सेवर या फिर पावर सेविंग मोड जो है उसको चालू रखना चाहिए। यह बैटरी खपत कम कर देता है हमारी। नोटिफिकेशन जो है वो सीमित कर देना चाहिए। हर ऐप की नोटिफिकेशन चालू रखने से बैटरी खर्च होती है। सिर्फ ज़रूरी ऐप्स की ही नोटिफिकेशन को हमें चालू रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम आउट है उसे भी हमें कम रखना चाहिए। स्क्रीन खुद से जल्द बंद हो जाए ऐसा सेट करना चाहिए। चार्जिंग की सही आदतें हमें अपनानी चाहिए। बैटरी को 20% से नीचे बहुत बार न जाने दें। 80 से 90% तक चार्ज करना बेहतर होता है। रात भर चार्ज पर लगाने से हमें बचना चाहिए। ओवर चार्जिंग से भी बैटरी लाइफ जो है वो घट जाती है।
1: जी हाँ दोस्तों, और जब भी फ़ोन चार्ज करें आप तो ओरिजिनल चार्जर का ही उपयोग करें। सस्ता या फिर नकली चार्जर बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐप्स और सिस्टम को अपडेट रखें। नए अपडेट में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होता है। और हीट से बचाए रखें। ज़्यादा गर्मी हो तो बैटरी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो ज़्यादा देर चलेगी और उसकी लाइफ भी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। यह थी आज की काम की बात।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार।
1: और मैं थी हेमलता। अब आपसे लेते हैं इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं शमशुद्दीन का गाया ये लोकगीत।

ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे चंपालाल घारो की आवाज़ में। लोक संगीत कार्यक्रम में आए सुनते हैं भूमराज राव पाटी का गाया ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनते हैं गैर फिल्मी नगमे, और पहला नगमा हमने कार्यक्रम का लिया है बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में।

कैसे बताएं और किसको बताएं कि कैसी थीं वो मुस्कुराहटें जिनमें जिंदगी के उजाले थे, कैसी थीं वो निगाहें जो इस दिल को छू लेती थीं, कैसी थीं वो खामोशियां जो कहानियां सुनाती थीं, कैसे थे वो हाथ जो अब इन हाथों में नहीं।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं उस्ताद सुल्तान खान और साथियों का गाया ये गीत।

ये गैर फिल्मी नगमा अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान का गाया अगला गीत।

श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में श्रोताओं, हम आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म राजा बाबू से, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: श्रोताओं फिल्म संगीत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जीत से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रिफ्यूजी से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहब्बतें से। आवाजें उद्भव प्रतिभा मजूमदार, श्वेता पंडित ईशान और मनोहर सेठी की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज जतिन ललित की।

फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धड़कन सी, जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार शानू ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता। आवाजें दी हैं अलका याग्निक, कुमार शानू, सपना अवस्थी और साथियों ने। गीत को लिखा है समीर ने और तर्ज नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत में अब सुनते हैं फिल्म मन से ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने, गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया संजीव दर्शन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ऐतराज से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं। गीत को लिखा है शमीर ने और संगीतबद्ध किया हिमेश देशमिया ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए, आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ ने। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और संगीत रचना अनु मलिक और जेफी फिल्म्स की।

श्रोताओं, इस फिल्मी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी अगली पेशकश लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं पहला लोक रंग, सुप्रिया का गाया हुआ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में ये लोक रंग हम आपको सुनवा रहे हैं, मोती खां का गया हुआ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अगला लोक रंग हम आपको लोक संगीत में सुनवा रहे हैं, कविता शर्मा का गाया हुआ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, लोक संगीत के इस प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आखिरी ये लोक रंग, जिसे गाया है ममता सिंह ने।

श्रोताओं, ममता सिंह की गाई हुई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं पहली ये रचना चंदन दास की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत में अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली और रूप कुमार राठौड़ की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुगम संगीत और सुगम संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई हुई ये रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत में ये आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, राहत फतेह अली खां की गाई हुई।

0: श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का यह प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में

क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की यह बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में यह बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइया खेती बाड़ी रे जी का कामकाज है या पकड़े जा साथ साथ बात आवे के किसान भाई खेती बाड़ी रे सागे पशुपालन जी को कामकाज है वो भी क्रिया करे क्योंकि खेती और पशु हमेशा एक दूसरे रा पूरक क्रिया है। खेती से पशुओं ने चारे री व्यवस्था मिल जा इंद्र आते आते खेती रे महीने पशुओं जी की गोबर है खाद है इंद्रो भी उपयोग हुए जा। आज आपने जानकारी देवा कि अभी गर्मी में पशुओं जी की देखभाल है वह आप किन तरह से राख सका। गर्मी रो मौसम आवे पशुपालक भाई जी का है उनार सामी समस्या है चुनौती है वे आ जा के भाई हिट स्ट्रेस जी को आवेला या कि लू आवेला तो उनसु आप किन तरह से पशुओं ने बचा सका। हलो जी को टेम्परेचर वे वेणु पशुआरे स्वास्थ्य माते तो बहुत बुरो असर वही जे हाथे हाथे पशु जी का दूध दिया करे तो दूध रो जी को उत्पादन है उन्द्र महीने 20-30% तैयारी जी की गिरावट है कमी है आ जा। इंद्र साथे साथे किसान भैया पशुओं जी की प्रजनन क्षमता होया करे और रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता है आ भी कम हो जाया करे इन वास्ते पशुपालक भाई जी का है आप रोज को पशुधन है उनरो गर्मी महीने विशेष ध्यान दे उन्हें लाग जाया करे तो उनरा किसा किसा खास खास जी का आप प्रबंध कर सका जो बात आवे कि भाई आवास प्रबंधन पशुओं वास्ते अपन किन तरह रो राखनो चाहिए।

पसोरो जी को आवास है, इंडे साथे उन्नी जी की सुरक्षा है, आ पहली सीढ़ी है। गर्मी रे प्रभाव ने कम करने वास्ते बाड़े रे महीने आपा कहीं कहीं कर सका, सगलो सु पहला आपा छत्रो जी को प्रबंधन है वो कर सका। सेठ जी को है टिन री चादरों है, तो उनरे ऊपर 3-4 इंच मोटी घास फूस या पराली जी की परत है आ बिछा दा, और साथे साथ इनने गिलो रखा तो पतरारो या टिन री जी की चादरा है इनरो तापमान जी को है वो कम हुआ लाग जा। दूसरी बात आवे पशुपालक भाइयों के हवारो जी को संचार है वो भी होना बहुत जरूरी है। पशुशाला रे चारों कानी खुली जगह होनी चाहिए, जिन्हों कहीं वेला के हवा जी की है उनरो क्रॉस वेंटिलेशन जी को है वो बनेडो रहे, और गर्म हवा ने बाहर निकलने वास्ते ऊंचाई रे माते रोशनदान रखना आपने जरूरी हो जा, जटे पशु आपा बांधा। पशुपालक भाई परदोरो भी प्रयोग करे, लूरा थपेड़ो बचाव रे वास्ते सेडरा जी का किनारा है उटे जुटरी बोरिया है या टाटरा जी का पर्दा है वे आपा लटका सका, और दोपहर रे टेम रे महीने गीला भी कर सका, जिनसो कहीं वे के कूलर जड़ी ठंडक जी की है वोट ओलार महीने मिल जा। इंडे हाथे हाथे जो मोटा डेयरी फार्म है फोगर्स है वोटे अपने फुहारो जी को प्रयोग है उपयोग है वो करना चाहिए, जिनू गाया है भैंसिया माते सीधो पानी री फुहार डालना सु उन जो को शरीर जो को तापमान है वो तेजी सु सामान्य हो जाए करे। इंडे हाथे हाथे पशुपालक भाइयों गर्मी में पशुहारी जी की भूख है वह भी कम हो जाया करे, इन वास्ते उनको जो आहार जी की गुणवत्ता है वह भी बढ़ावनी बहुत जरूरी हो जा, के पशु ने दोपहर री तेज धूप रे महीने दाणो मिश्रण अपने नहीं देवनो चाहिए। भोजन देवनो सब बढ़िया जी को टाइम वे वो सुबह बेगो 5 बजे ले 9 बजे तई, और आतरण टाइम रे महीने 7 बजे बाद रे महीने अपने पशुआ ने जी की नीड़नी है चारनी है अपने करनी चाहिए। इंडे हाथे हाथे पशुपालक भाई सुको चारे री जगह जी को है हरो चारो पशुआ ने खिलाड़ो चाहिए, जो बरसीम है जई है या मक्को है इनकी मात्रा आपने बढ़ावनी चाहिए, हरो चारो शरीर महीने पानी रीजी की आपूर्ति आप बनेड़ी राख्या करे। इंडे हाथे हाथे पशुआ ने पोषक तत्व भी आपने देवनो जरूरी हो जा, आर महीने प्रति पशु 50-100 ग्राम मिनरल मिक्सचर है और 30-50 ग्राम नमक अवश्य रूप मिलाना चाहिए, और पसीने रे माध्यम शरीर निकले लवणारी जी की पूर्ति है वो क्रिया करे। हाथे साधारण आहार जी को है ऊर्जा की कमी पूरी करने वास्ते पशुआ ने उच्च गुणवत्ता वालों संतुलित जी को दानो है और देनो चाहिए, और जल प्रबंधन की आप बात करा तो पानी पशुआ रे शरीर जी को तापमान है उन्हें नियंत्रण राखनो जी को है प्रमुख रूप से साधन है। एक दुधारू पशु ने गर्मी रे महीने एक दिन रे महीने लंगे टंगे 80-100 लीटर पानी की जरूरत पड़े, उनके आड़े पाड़े 24 घंटा ताजो और ठंडो पानी अपन उपलब्ध रखनो चाहिए, और छायादार स्रोत रहना चाहिए कि भाई पानी की टंकी है होदी है तो उठे भी ढग्योड़ी रहनी चाहिए, इवनी की धूप रे कारण जो को पानी है वो गर्म हो जा, पशुआ ने गर्म पानी पिलावा तो दूध उत्पादन माते भी प्रभाव पड़िया करे, और टेमो टेम पशुआ ने नहलावनो और उन्हें जी की शरीर की देखभाल है वो भी आपने करनी चाहिए। जो आप भैंसिया की बात करा तो दिन रे महीने कम 2-3 दान ठंडे पानी बहन ने हिनाण कराना चाहिए, और गाय री आप बात करा विशेषकर संकर नस्ल जी की गाया वे तो उन्हें भी दिन में 2 बार नहलावनो फायदेमंद रिया करे। इंडे हाथाते कटी आड़ पाड़े तालाब री व्यवस्था वे तो भैंसिया ने दोपहर भगत में तालाब में बैठा दा, क्योंकि भैंसिया री त्वचा जी की है वह काली हुआ करे और काली त्वचा के कारण गर्मी जी की भैंसिया ने ज्यादा लागिया करे। और एक बात अपने ध्यान रखनी है के बाहरी परजीवी भी पशुआ माते बहुत अटैक करिया करे, जो गर्मी रे महीने जू है चींचड़ी है और कील नीरो जी को प्रकोप है और बढ़ जाया करे। पशुशाला जी की दरारा है उन्हें महीने कीटनाशक और छिड़काव करना चाहिए, और पशु जो को शरीर है वो अपने साफ सुथरो रखना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई गर्मी में पशुओं की देखभाल आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीख दिराओ राम राम।

किसान साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 1:15 हो रहे हैं। आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका, आइए सुनते हैं।

0: नारीवाटिका सुनने वाली सभी सखियों को उनकी अपनी रेडियो सखी लता परिहार और
1: तमन्ना बोहरा
0: का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: सखियों, इस कार्यक्रम का संयोजन किया है मनीष सोलंकी ने।
1: देखिए लता जी, दोपहर का ये समय
0: जी
1: थोड़ा सा ना खास होता है, बहुत ही ज्यादा। पूरे दिन का जो भी टाइम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए शाम खास होती है, कुछ लोग कहते हैं रात पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो उनका वो समय खास होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी और हमारी जो ये सखियां हैं प्यारी सी, उनका खास समय जो है ये दोपहर का ही है, क्योंकि एक तो सारा काम हो जाता है, अब ये अपने लिए जो टाइम होता है इनके पास, जो सेल्फ टाइम जिसे हम कहते हैं,
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: ये अपना प्यारा सा शो नारी वाटिका, जो इनका फेवरेट शो है, वो सुनने हमारे साथ आ जाती है।
0: जी
1: और आज एक विषय जो है बड़ा चर्चा में है, जब मैंने दिन के इस समय की बात करी है, तो वो है मौसम।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तमन्ना आपने। और मौसम के लिए तो अभी जिसको पूछो पूछने की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति के हाल हालात और व्यवस्था ही बता देती
1: आप मुझे देख के क्यों बोल रहे
0: है।
1: हैं?
0: बिल्कुल, वो हालात ही ऐसे बता देते कि आदमी का रुमाल है जो कि पसीना पहुंचता हुआ, सांसें चढ़ी हुई, चेहरा लाल हुआ हुआ, और ऊपर की तरफ, मतलब पता है धूप है फिर भी ऊपर की तरफ हर व्यक्ति देखता है कि शायद कुछ बरस जाए, शायद कुछ ठंडक हो
1: मैं तो ऊपर की तरफ देख के ये
0: जाए।
1: सोचती हूँ, क्या पता भगवान को दया ही आ जाए कि थोड़ी देर के लिए ये
0: बिल्कुल
1: जो धूप है इसे कम कर दें। और अभी तो नौ तपा भी शुरू हो गया लता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तमन्ना, और तभी ये कहते हैं कि गर्मी का जो ताप होता है ये 9 दिन बहुत गर्म होते हैं, तो ये सूर्य का जो प्रवेश होता है इस वजह से इसको नौतपा कहा जाता है। और इसके अंदर वही वाली बात है, 9 दिन, आजकल तो बहुत अच्छी बात है कि हर मीडिया के थ्रू समाज सरकार द्वारा भी बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आप अपने इस नौतपा पे अपना सावधानियां रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें, बाहर निकलें तो खूब सारा पानी
1: बिल्कुल
0: पीकर
1: बिल्कुल
0: पानी
1: बिल्कुल
0: पीकर निकले, और हो सके तो आजकल जिसको गमछा, जो लगभग आजकल लोग
1: हाँ
0: भूल चुके हैं, वो
1: हाँ
0: पतला कपड़ा होता था जिसे आप लपेट के आराम से गर्मी से बचा जा सकता था। और इसमें एक तमन्ना बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कानों के द्वारा भी बहुत हीट जो है वो
1: बिल्कुल,
0: स्ट्रोक करता है।
1: जो हमें हमें जो लू लगती है वो इसी के, ये जो हमारे कान होते हैं या फिर नाक के माध्यम से
0: हाँ
1: या मुंह से जो हम श्वास लेते हैं उसके
0: जी
1: माध्यम
0: जी
1: से आती है। बहुत सारी विषय है इसके ऊपर कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या आपको टेक केयर करना चाहिए जब आप बाहर जाते हैं, जब आप काम पे जाते हैं।
0: जी जी
1: बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का जो हमारा कथाकथित रिवाज है
0: जी
1: कि
0: जी
1: एक
0: बिल्कुल
1: शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत नगमे से होती है, तो
0: जी
1: क्या शुरू किया जाए?
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं सखियों को ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों सच पूछे अगर कोई मुझसे या फिर लता से, तो नौ तपा सुनते ही एक चीज याद आती है जिसको हम अभी म्यूजिकल ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे काफी देर तक, वो है पुरानी बातें और पुराने दिन।
1: जी
0: उस वक्त तो नौ तपा का लता जी एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि एक तो आसपास पेड़ बहुत हुआ करते थे और वो दादी नानी के जो हम लोग ट्रिक्स यूज किया करते थे, जैसे वो कैरी का पानी हो गया या गर्मी में वो ठंडा ठंडा इमली का पानी।
1: राइट
0: अब क्योंकि लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे पुराने जो नुस्खे हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं।
1: कोई बात नहीं ना, तमन्ना, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और
0: बिल्कुल
1: कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति पुरानी जड़ों की ओर लौटता है, और
0: बिल्कुल
1: हमारा ये कार्यक्रम बहुत हद तक उस उन चीज़ों को समर्पित है कि हम जो पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं उनको हम वापस दोहराएं, है ना, और हमारी यादें भी ताज़ा हो जाती है। तो यानी जब पानी की बात करी आपने, तो पानी का पहले पानी की बचत भी बहुत किया करते थे लोग, पानी
0: बिल्कुल
1: को बेवजह ना फैलाया नहीं करते थे, है ना। तो पानी की बचत आज भी उतनी ही ज़रूरी है, तो जितनी बचत करनी है उतना उसका सेवन करना भी ज़रूरी है। और चूंकि पहले मटकियों में पानी रखा जाता था, आज थोड़ा सा कल्चर फ्रिज का आ गया है, पर कोशिश करें मटकी का पानी पिए, क्योंकि
0: और
1: मटकी में जो रेत होती है ना,
0: हाँ
1: उस मिट्टी
0: हाँ
1: में, उस मिट्टी की अपना आप में
0: यही
1: एक तो
0: बात
1: हाँ ठंडक भी मिलती है, साथ में मिट्टी के मिनरल्स भी होते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज समय के हिसाब से आप देखना, हर घर में आपको RO मिलता है ना,
0: बिल्कुल
1: तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो शरीर को ज़रूरी अवशोषित, हमको अवशोषित करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते। तो
0: बिल्कुल
1: कोशिश करें खुद और बच्चों को भी मटकी के पानी की आदत डालें, खूब मटकी का पानी पिए और एक अलार्म रख लें, है ना। हम
0: ये तो
1: हर
0: बहुत
1: चीज के लिए
0: जरूरी है।
1: आजकल डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करने लगे हैं, तो थोड़ा सा अलार्म भी रख लें कि हर आधे घंटे बाद एक अलार्म बज जाए, एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक बज जाए जो आपको याद दिला दे कि
0: कि
1: भाई
0: आपको पानी
1: पानी पीना
0: पीना है,
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: पानी पिए। और जो कैरी का पानी जो आप बता रहे थे हमारा, वो आज भी बहुत चलन में, पर चूंकि वो पैकेट में आता है, तो कोशिश
0: हाँ,
1: करें सखियों उसे घर पे ही बनाने का प्रयास
0: और
1: करें,
0: बहुत
1: क्यों,
0: आसान है।
1: हाँ बहुत आसान है, और घर पे बनाए, घर के हाथ का स्वाद भी अलग होता है, और यही जो परंपरा है, यही जो स्वाद है तमन्ना, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो आज अगर हमारी दादी नानी भी बनाती थी, आज हम उसको कितना रेलिश करते, याद करते हैं,
0: हाँ
1: तो वही आज अगर हम बनाते हैं या हमारी सखियां बनाती हैं, तो उनके भी बच्चे देखते हैं और बच्चे सीखते भी हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना, पहला एजुकेशन, पहली शिक्षा घर ही
0: घर
1: होती है।
0: से ही, और जो
1: जी,
0: देखेंगे
1: तो
0: वही
1: बिल्कुल,
0: सीखेंगे
1: कैरी का
0: बच्चे।
1: पानी हुआ, इमली पानी हुआ, और इस मौसम में कोशिश करें खट्टी और थोड़ी सी तीखी चीजें खाएं, पर तीखी का मतलब ये नहीं कि गर्म मसाला, थोड़ा
0: हाँ
1: गर्म मसाला, क्योंकि शरीर में जो तासीर है ना तापमान में, वो आपको ठंडी चीजों की रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और आपने जब मटकी का बताया, उसमें आपने उदाहरण दिया कि अब थोड़ा थोड़ा मटकी में आप पानी रखें, तो मटकी के आसपास ना एक वो कपड़ा हुआ करता था जिसे हम
1: गन्ना
0: लोग गन्ना बोलते थे, और वो
1: बोलते
0: बोरी के शेप का एक कपड़ा होता था,
1: हाँ
0: जो उसको लगाते ही वो ऑटोमेटिकली एक रेफ्रिजरेटर और एक फ्रिज का काम करने लग जाता था,
1: बिल्कुल
0: उसमें अक्सर
1: बिल्कुल
0: पानी ठंडा रहता था।
1: बिल्कुल
0: और सर्दियों में तो फ्रिज का पानी हम लोग अवॉइड करते ही करते हैं, लेकिन सखियों को ये भी पता होना चाहिए कि गर्मी में भी फ्रिज का पानी हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: क्योंकि उसकी

0: सिर पेट में जाके
1: गर्म हो जाती है और
0: होती
1: वो लू जल्दी अट्रैक्ट करता है.
0: बिल्कुल.
1: अक्सर हमारी आदत होती है कि हम लोग गर्मी से जैसे ही घर आते हैं फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं.
0: इसमें तमन्ना एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि पहले आपको याद होगा हमारे घर से जब भी लोग घर से बाहर से जब घर में आते थे तो बाहर ही एक पानी का बर्तन रखा होता था, उसमें वो
1: हाँ
0: हाथ और पैर धो के फिर अंदर आया करते थे. दरअसल उसका एक अगर साइंटिफिक रीजन बताऊं तो उसका रीजन ये था कि जब आप बाहर से आते हैं तो आपके शरीर में जो एक गर्मी आप लेके अंदर आते और आते ही आप ठंडा पानी पीते तो बेहतर है पहले बॉडी का टेम्परेचर हाथ और पैर,
1: नॉर्मल.
0: हाँ अगर
1: हाँ
0: आप हाथ और पैर धो लेते हैं अपना हल्का सा मुंह धो लेते हैं तो आपके शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है ताकि घर में जब आप आते हैं और घर का पानी अगर आप लेते हैं तो वो आपको लू नहीं लगती और सर्द गर्म जिसको बोलते हैं ना सर्द
1: हाँ
0: गर्म वाली स्थिति नहीं
1: नहीं
0: होती
1: बनती.
0: है. जी
1: देखिए आजकल सुविधाएं बहुत हो गई है, लेकिन उन सुविधाओं का किस तरह से यूज करना चाहिए वो हमें देखना होगा, और पुरानी रूट्स को किस तरह से हम जिंदा रख सके ताकि ये जो भी गर्मी की वजह से हमारी अनगिनत बीमारियां हैं वो थोड़ी सी हम लोग उनपे उनको बचा सके. चाहे आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का आप खाना खाते हैं गर्मियों में, लिनन कॉटन इनका
0: ज्यादा
1: पहनावा
0: से
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: प्रयोग
1: करें
0: करें. जी बिल्कुल.
1: ताकि आप हर एक एस्पेक्ट से इस गर्मी को या इस नौ तपे से मुकाबला कर सकें या फिर उसको एक बारी के लिए टाल सकें.
0: बिल्कुल बिल्कुल.

0: सबका बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए बातों बातों में हमारी सखियां भी आ चुकी हैं, तो सखियों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका में। और अभी मैं और लता जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो हमें लगा कि एक चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पहले जैसी गर्मी अब नहीं है, अब ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है। तो हमें सबसे सबसे ज़रूरी दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, एक है पेड़ पौधे और दूसरे हैं बच्चे और बुजुर्ग।
1: जी
0: इन लोगों का ध्यान रखना हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे गर्मियों में ना बाहर अगर आपने बालकनी में अपने कोई पेड़ पौधे लगाए हैं या फिर आपकी कॉलोनी में कोई पेड़ पौधे, तो आपने देखा होगा पीले पीले या सूखे सूखे पत्ते उस पर लगने लग जाते हैं। तो किसी अगर आपको अच्छी गार्डनिंग आती है, आपको पेड़ पौधों का ख्याल रखना आता है, तो आप उसकी सफाई करें, उसमें प्रॉपर पानी डालें, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें जो नर्सरी चलाते हैं, ताकि आसपास के जो जीव जंतु हैं जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, उनको हम लोग खराब होने से या उनको नष्ट होने से हम बचा सकें। क्या कहती हैं आप?
1: बिल्कुल तमन्ना। और दो कोशिश करें, दो समय का उनको पानी का छिड़काव करें। नहीं हो सका तो उससे भी बढ़िया है आप किसी भी सूती कपड़े को पानी में गीला करके निचो के, आप
0: अच्छा
1: जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जो आपके छोटे पौधे हैं, आप वो गीला कपड़ा निचो कर उसका पानी निकाल कर हल्का गीला, आप जैसे तुलसी है
0: हाँ
1: इस समय
0: हाँ
1: तुलसी के जलने की बहुत संभावना रहती है, तो आप वो गीला कपड़ा उनके ऊपर लपेट दें। तो एक, और अब पौधों के आसपास कुछ बर्तनों में पानी भर के रख दें, ताकि जो पानी का वाष्पीकरण होगा तो एक आसपास एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी,
0: वाह,
1: उससे
0: ये
1: भी वो
0: बहुत अच्छा आइडिया।
1: पौधे आराम से रह सकते हैं। और यदि आप छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑब्वियसली छुट्टियां हैं, बच्चे परिवार से घूमने जाते हैं ददिया ननिया या कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो कोशिश करें छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स जो होती हैं उनमें एक छोटा बारीक सा छेद कर दें, और वो बॉटलें सभी आप अपने अपने गमलों में उल्टा करके या आड़ा करके लटका दें। उससे क्या होता है कि बूंद बूंद बूंद बूंद भी आपके पौधों को पानी मिलता रहेगा, तो कम से कम जब तक आप लौट के आएंगे आपको अपनी हरी बगिया है वो इतनी झुलसी भी नहीं मिलेगी,
0: ये
1: है
0: तो
1: ना।
0: बहुत ही
1: तो
0: अच्छा आइडिया
1: ये
0: है।
1: भी आप प्रयास कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके गली मोहल्ले में जहाँ पे भी पानी की कुंडियाँ या टंकियाँ रखी हुई है तो उनकी साफ सफाई करवा दें, और जो भी गली के जो जीव जंतु हैं उनके लिए पानी जरूर भर के रखें, क्योंकि जितनी प्यास हमें भी लगती है ना तमन्ना, उनको भी लगती
0: बिल्कुल, और ये
1: है ना।
0: बहुत ही अच्छा आइडिया आपने बताया, कभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं।
1: जी
0: हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी हमारे पानी जो हम लोगों ने यूज़ कर लिया है उसको छान कर साफ करके उसको रीयूज़ करते हैं, ताकि हम लोग पानी बचा भी सकें और पेड़ पौधों का भी ध्यान रख सकें।
1: बिल्कुल। और हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं इनको हीट वेव ही स्ट्रोक बहुत जल्दी
0: बहुत जल्दी लगती है,
1: लगता
0: बिल्कुल।
1: है, तो उनके लिए भी विशेष कर यही है कि ज्यादा से ज्यादा उनको दिन के 11 बजे तक कहीं पे भी जाना है, कोई भी काम करना है, मंदिर जाना है, तो 11 बजे तक वो जाए और वापस घर में आ जाए, और वापस शाम को संध्या के बाद ही निकलने का प्रयास करें। और उनके पास पानी का, देखो कई बार होता है उनको याद नहीं रहता है, तो आप कोशिश करें एक छोटी मटकी है, सुराई है या पानी की बॉटल है वो हमेशा उनके पास रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी से भरे फल फ्रूट उन्हें खिलाएं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये जो पानी से भरे फल हो वो उनको हाइड्रेटेड रखते हैं,
0: बिल्कुल,
1: छाछ है, राबड़ी है, तो इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चीज़ों का करते हैं तो इस मौसम में जो लूज मोशन होने की जो दिक्कत होती है, उल्टियों की दिक्कत होती है, आपको उसमें राहत मिल सकती है।
0: छाछ, नींबू पानी, और मतलब मोस्टली घर के बने जो ठंडे प्रोडक्ट्स हैं
1: जी जी
0: जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो शरीर को बहुत राहत देते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा लता जी ने, अगर बहुत ज़रूरी ना हो, अगर आवश्यक नहीं है, तो दोपहर में तो कहीं भी बाहर निकलना अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है, वैसे तो हर एक मौसम में हर एक व्यक्ति को अपना ध्यान रखना ही रहना चाहिए,
1: हर हर मौसम की एक ज़रूरत
0: ज़रूरत होती
1: होती है,
0: है।
1: थोड़ा हम सावचेत रखें, कई बार लापरवाही जो होती है वो बहुत दुख देती है, तो कहते हैं
0: बिल्कुल।
1: ना सावचेती से सावधानी भली, तो वो सावधानी ज़्यादा अच्छी होती है चीज़ों को बिगड़ने से बचाने के लिए।
0: बिल्कुल, तो इसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, जैसे आप अभी, मैंने बहुत नोटिस किया कि घर के अंदर अभी भी रेगुलर सब्जी बन रही है। हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में गर्मियों की एक प्रॉपर सब्जियां होती हैं, जैसे खीच बनते हैं, गुलाब बनता है, और हमारे यहाँ तो वो इमली और चीलड़ियों की एक सब्जी बनती है ठंडी ठंडी।

0: वो हम लोग खाते हैं अक्सर, और छाछ और चावल हम लोग मिला के खाते हैं।
1: वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का
0: हाँ
1: भी वर्क करता है, पेट पे ठंडक देता
0: हाँ
1: है ना। और एक राबोड़ी की सब्जी, बड़ियों की
0: हाँ
1: सब्जी, ये बनी राजस्थान के एनवायरनमेंट को देखने के हिसाब से ही
0: बिल्कुल
1: बनी है। और इस समय आप केर कुमटियों की सब्जी खाइए, बहुत ज़्यादा फायदा करता है।
0: बिल्कुल
1: केर आपका पेट भी साफ रखता है, कुमटिया आपको ठंडक देती है। तो मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर ने इतनी खूबसूरती से हर भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए उसके अनुसार पेड़ पत्तियाँ
0: हाँ।
1: जीव जंतु बनाए हैं ताकि वो उस वातावरण में हैबिटेट में रह सके।
0: और अभी भी मैं देख रही हूँ कि अक्सर लोग सर्दियों की सब्जियां खाते हैं, तो वो अवॉइड करें और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसे कंज्यूम करना ज्यादा शुरू करें।
1: पर तब तक सुनवा दे सखियों को एक गीत।
0: बिल्कुल।

0: मन मस्ता हो जाता है जब ऐसे कोई गाने सुनते हैं ना, और इतनी गर्मी के मौसम में भी बहुत ही ज्यादा जो एक एक एकदम क्या
1: सुकून
0: कहते हैं,
1: भरे,
0: सुकून
1: सुकून
0: भरे
1: भरे.
0: और असरदार जो सबसे चीज है वो है संगीत।
1: बिल्कुल
0: क्यों सही कहा ना, सकियों अगर
1: बिल्कुल.
0: सही कहा है तो आप बता सकते हैं हमें भी। तो जब भी ऐसा कोई मौसम होता है जिसमें बहुत गर्मी होती है, तो हमारा मन अपने आप एक चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। कुछ नहीं होने के बावजूद भी हम थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा तनाव भरा महसूस करते हैं गर्मी के कारण, क्योंकि हम जो काम करने निकलते हैं उसमें हम जिस उत्साह से निकलते हैं, फिर मौसम की वजह से जब हमारे मन पर उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है, तो हम अक्सर हमारे वर्क प्लेस पर भी, हमारे काम के दौरान भी थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं।
1: उसके लिए सबसे बढ़िया है तमन्ना, अपना रेडियो अपने पास रखें, प्यारे प्यारे गीत सुनते रहें और मन को प्रफुल्लित
0: बिल्कुल।
1: रखें.
0: और थोड़ा सा मैंने अक्सर ये नोटिस भी किया है कि घर का माहौल भी थोड़ा चेंज हो जाता है गर्मियों के समय में भी। खाना समय पर ना हो तो थोड़ा बहुत एकदम चिड़चिड़ापन, जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये चिड़चिड़ापन सभी में स्वाभाविक हो जाता है।
1: पर तमन्ना
0: तो
1: वही है ना, परिवार परिवार
0: परिवार,
1: इसी को ही कहते हैं कि जब
0: हाँ
1: परिवार में हर व्यक्ति, उसकी अपनी सुविधाएं होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है, पर परिवार कहते ही उसी को है जो मिलकर चलता है, यानी सबकी सहूलियतों को, सबकी जरूरतों को देखते हुए परिवार को चलाना होता है.
0: हाँ एक चीज ये भी देखी है हमने, आपने भी नोटिस की होगी, जब हम छोटे थे, जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे, सब साथ में होते थे, तो एक चिड़चिड़ापन अचानक से गायब हो जाता था। भरी धूप में भी हम लोग क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन जब से ये थोड़े
1: एकल
0: से
1: परिवार
0: एकल
1: होने.
0: परिवार होने लगे हैं, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। तो सखियों को एक ही एडवाइस है कि एक चाय का समय ऐसा होता है जो सबके साथ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं, जो नाश्ते का समय होता है वो आप सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं,
1: बिल्कुल. वो ही एक समय होता है जब परिवार के सारे सदस्य
0: एक जैसे होते
1: एक
0: हैं।
1: जगह बैठे. और कहते हैं कि खाना या भोजन एक ऐसा होता है जो सीधा आपके दिल के रास्ते को जाता है. तो
0: बिल्कुल
1: इसीलिए कहते हैं कि कम से कम दिन का एक भोजन पूरे परिवार के सदस्यों को सभी साथ बैठ के करना चाहिए. और वही एक जगह होती है जहाँ बड़े छोटे बूढ़े सभी एक साथ बैठते हैं, अपने मन की बात कह पाते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुन पाते हैं और शेयर कर पाते हैं.
0: बिल्कुल। और अभी सभी लोग कामकाजी हैं, हमारी सखियां भी बहुत अब तो सभी क्षेत्र में काम करते
1: जी
0: हैं,
1: जी बिल्कुल.
0: तो कई बार काम के क्षेत्र में ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं जिससे आपका मन बहुत भारी और बहुत विचलित हो जाता है। जब अक्सर आप परिवार के साथ बैठे तो उन चीजों को आप शेयर करें। अगर आप परिवार में कुछ महसूस कर रहे हैं, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगी हैं, या जिन चीजों के बारे में बात करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है, उनके बारे में बात करें। क्योंकि अगर हम अक्सर चीजें मन में रख लेते हैं, तो एक तो मौसम की वजह से हम परेशान हैं, हमारा स्वास्थ्य इम्पैक्ट कर रहा है, और फिर मन को लेकर भी, मन की चिंताओं से भी हम हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं। तो एक उसे क्या बोलते हैं, हमारी मेंटल स्टेट जो है वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दादा आप इससे
1: तमन्ना,
0: अग्री करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल तमन्ना, ऐसा ना, इसलिए तो कहा जाता है कि घर सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है ना, पूरे परिवार को मिलकर लोगों को घर में उस व्यवस्था को संभालना पड़ता है. और चूंकि जैसा कि आपने बताया कि अब समय ऐसा आ गया कि हर व्यक्ति कामकाजी है,
0: हर काम
1: चाहे छोटा
0: बिल्कुल
1: हो चाहे बड़ा हो, और स्पेशली महिलाओं के लिए बाय डिफॉल्ट कहा जाता है कि घड़ी की सुई की तरह उठती हैं और घड़ी की सुई की तरह टक टक टक टक टक टक टक चलती रहती
0: बिल्कुल।
1: है
0: एक वो
1: ना.
0: अंग्रेजी की कहावत भी है, मैन वर्क्स फ्रॉम मंडे टू संडे एंड वुमेन वर्क फ्रॉम
1: सन टू नाइट,
0: सन टू नाइट ऑल्सो।
1: सन टू
0: हाँ
1: मून, सन टू मून
0: हाँ
1: है ना.
0: एंड
1: तो
0: देयर वर्क इज
1: महिला
0: नेवर डन, मतलब कभी भी उनका काम खत्म
1: खत्म
0: नहीं
1: नहीं.
0: होता है।
1: तो ऐसे में जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य उस काम को थोड़ा थोड़ा बांट ले, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब कहा जाता है कि फला काम पुरुष नहीं करते या फला काम महिलाएं नहीं करेंगी. अब इवन अगर घर में साफ सफाई का काम है तो पुरुषों को हाथ बटाना चाहिए. मतलब अब हम पर्टिकुलर कामों को न गिनाए, क्योंकि इतना तो समझ आती है सभी को सुनने में, कि परिवार में बहुत सारे काम होते हैं. तो अगर आप मिलकर उस काम को अगर सहज रूप से बांट लेते, क्योंकि अब घर सिर्फ अकेली औरत का नहीं है, घर अब परिवार का है, पुरुषों का है. और तमन्ना, सबसे बहुत गौर करने वाली बात आपको बताती हूँ कि जो हम बच्चों को बहुत कुछ बोलकर नहीं करवा सकते, यदि उसने अपने पिता को माँ का हाथ बटाते हुए देखा है, सब्जी काटते हुए देखा है, बर्तन को सलीके से जमाते हुए देखा है, कपड़ों को सुखाते हुए देखा है, या और भी छोटे मोटे घर के काम को करते हुए देखा है, तो बच्चे बिन बोले सीखते हैं.
0: बिल्कुल
1: उनमें वो ईगो नहीं होता कि ये काम मैं नहीं कर सकता.

0: तो बहुत ज़रूरी है कि सारे काम, बहुत सारी बातें जो हैं वो आप खुद करिए, बच्चे अपने आप सीखते हैं।
1: और ये तो हम अक्सर बचपन से देखते ही आए हैं। मैंने अपने दादा को बहुत काम करते हुए देखा है, सारा गार्डन वो संभालते थे घर में। अक्सर हमने देखा है हमारी दादी को सबसे पहले सुबह की चाय वही पिलाते
0: क्या
1: थे,
0: बात
1: तो
0: है।
1: ये चीजें हमने देखी हैं घर पे, पता नहीं धीरे धीरे क्यों लुप्त होती जा रही हैं।
0: बस वो, क्योंकि वही है कि समय का अभाव कह दिया, या ये कह दो कि हमारे समय ने, कुछ गैजेट्स ने हमारा समय चुरा लिया,
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो
1: तो सखियों से तो हमारी यही कहना है कि मिलजुल कर काम करें और अपनी मन की बातें टेबल पर या फिर नाश्ते के समय एक दूसरे के साथ शेयर करें, और कुछ भी बात अपने मन में ला रखें। मौसम और मन दोनों
0: जी
1: आपस से जुड़े हैं, तो आप मौसम से भी अपना अपना बचाव करें, अपना ध्यान रखें और अपने मन की बातें भी साझा करते रहें, ताकि चिड़चिड़ापन यूं
0: कम
1: गायब हो
0: कम हो जाए।
1: जाए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देखिए, मन की बात चली तो और इतना प्यारा हमने गीत भी सुना कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, और हमने अभी डिस्कस किया कि हम कुछ भी बात मन में नहीं रखेंगे। तो दोपहर का समय है
2: जी,
1: चाय का समय है, सारी सखियों से मैं भी अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रही है। हमने अभी सोसाइटी की सामाजिक तौर पर एक बात करी कि हम सभी को अपना अपना काम करना चाहिए, घर में काम बांटने चाहिए और थोड़ा प्रोग्रेसिव यानी कि नए जमाने के साथ थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो एक चीज मुझे काफी दिनों से सता रही है, अभी जो रिसेंट हमने सोशल मीडिया पे केसेस देखे हैं कि दहेज प्रथा जो कब की समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है गिफ्ट और तोहफे के मुखौटे के पीछे।
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा तमन्ना। और वाकई में कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, हम जेंजी हो गए हैं, मगर अभी भी कुछ कुरीतियां हैं जो घरों में, वो कहते ना, संदूकों के कोने में दबी पड़ी हैं।
1: और इन चीज़ों ने मुझे पिछले हाल ही कुछ दिनों में इतना डिस्टर्ब कर दिया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं अपने मन की बात को पता नहीं कैसे रखूं, यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है। जनरली मेरे पास शब्दों की कमी नहीं होती, लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस शब्द ढूंढ रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैं जब इस रिसेंट कुछ केसेस के बारे में सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है एक बेसिक सामाजिक एजुकेशन की। रिश्तों में दिखावों से ज़्यादा समझ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अपनापन यानी कि जो अपनायत हम मारवाड़ी में कहते हैं उसकी कितनी ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और कितना ज़रूरी है समय समय पर समाज में होने वाले इन हलचलों, इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना।
2: बिल्कुल तमन्ना, और इसके लिए यही कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: यदि आज आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, मैं उसमें वर्ग भेद में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत दोनों को ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर दोनों को अगर पढ़ लिख लिया जाए, उनकी शिक्षा पूरी की जाए, और काफ़ी हद तक यदि वे स्वयं कमाने लायक स्वालंब हो जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये गिफ्टिंग की नौबत आती है। क्योंकि और आवाज़ दोनों को ही उठानी चाहिए, हम हमेशा एक पुरुष वर्ग या बेटे के वर्ग पे ही क्यों दोष दें और बेटियों पे ही क्यों दोष दें।
1: बिल्कुल,
2: है ना, क्योंकि ले तो दोनों ही रहे हैं।
1: हाँ,
2: तो क्यों बेटियां मना नहीं कर देती कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और क्यों जो शादी करके लेके जा रहे हैं
1: वो आवाज नहीं उठाते,
2: वो क्यों नहीं आवाज उठाते, वो जो पुरुष जो शादी करने जा रहा है, जो जीवन साथी कह रहा है उसको, उसको नहीं लग रहा कि मैं अगर उसके जो परिवार मेरे से जुड़ा है उस परिवार को तकलीफ दे के उनसे जबरदस्ती कुछ लेके। और मैं तो कहती हूँ गिफ्टिंग का सिस्टम है ही क्यों।
1: हाँ?
2: बेटियां गिफ्ट करने के लिए नहीं होती है।
1: हाँ?
2: वो पूरा बेटियों के साथ आया हुआ समान गिफ्ट नहीं होता है, वो माता पिता की इच्छा है कि वो जो सहज रूप से अपनी बेटी को दे सकते हैं, तो उस पे ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बेटी का ही अधिकार है, वो दे रहे हैं तो पूरा परिवार उसका उपभोग करेगा।
1: उन्होंने बेटी दे दी, वो और चीजों के ऊपर क्या विषय पे चर्चा करें। और मुझे ऐसा यहाँ पर एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं बहुत स्पष्टीकरण के साथ रखना चाहती हूँ कि ना मैं किसी एक पक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हूँ या किसी और पक्ष के ऊपर, जिसमें इक्वली दोनों पक्षों की गलती होती है। जो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है, जो व्यक्ति इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा, हमारे यहाँ हमारे पुराणों में वेदों में ये चीज लिखा है, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला भी होता है, यानी कि दोनों ही अपराधी हैं। तो हमें समाज की ऐसी कुरीतियों पर अपनी आवाज उठाने चाहिए, परस्पर सम्मान लाना चाहिए, और जैसा लता जी ने बहुत स्पष्टीकरण से कहा कि शिक्षा दोनों वर्गों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही आपको सशक्त बनाती है।

0: सखी स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी वाटिका में, और मैं हूँ लता और मेरे साथ है प्यारी तमन्ना। तो सखियों, बात ही हम कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, पर कई बार होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर हमें उसका डायरेक्शन नहीं मिलता। पर कहते हैं कि हर शुरुआत का प्रथम जो स्टेप होता है वो थोड़ा तकलीफ में होता है, बट अगर आप उसे करने की आदत डाल लें तो वो आप 21 दिन कोई भी काम को करिए, आप उसकी आदत में आ जाएंगे। तो तमन्ना, एक हमारा एक ग्रुप है, हमारी सभी सखियों का एक ग्रुप है, आजकल सभी किट्टी ग्रुप बड़ा फेमस
1: हाँ
0: होता
1: बिल्कुल।
0: है, महिलाओं का एक ग्रुप होता है, पर हमने एक नई पहल करी जो मैं चाहती हूँ कि सखियों आप भी इसको ध्यान से सुने, और आज से आप भी अपनी लाइफ में कोई 21 दिन ऐसे हो जो आप उसको हर दिन एक टास्क के रूप में करें कि आज
1: अरे
0: मुझे
1: वाह,
0: ये काम करना है।
1: हम टास्क दे रहे हैं
0: हाँ
1: सखियों
0: हाँ
1: को।
0: बिल्कुल, सखियों को हम एक टास्क दे रहे हैं। सखियों मन में सोच लीजिए कि अब आप क्या क्या करेंगे, अपनी लिस्ट बना लीजिए। जैसे मेरा पहला टास्क जो हमने शुरू कर दिया है वो ये है कि हम कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी बाहर खाना खाने जाते हैं,

0: तो हम वहाँ के टिश्यू पेपर का प्रयोग नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि टिश्यू पेपर बनाने से हमारे बहुत सारे पेड़ कटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे एक प्रयोग नहीं करने से वहाँ कोई फर्क पड़ेगा, पर शायद मेरे मन पे पड़ेगा। मेरी अगर मेरे ग्रुप में 15 या 16 सहेलियां हैं हम, और हम 16 लोग अगर टिश्यू पेपर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शायद हम एक शुरुआत कर रहे हैं। और तमन्ना कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ अगर आप 3 लोगों को बताते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो
1: बिल्कुल
0: आज इस माध्यम से, वाटिका, नारी वाटिका माध्यम से, हम न जाने बहुत सारी सखियों से हम जुड़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं से जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है शायद हमारी ये पहल काम कर जाए। तो सखियो, मेरा टास्क तो यही है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगी, मैं मेरा रुमाल, मेरा हैंकरचीफ मैं साथ लेके जाऊँगी। और आजकल वॉश बेसिन तो होता ही है सब जगह, आप उठ
1: बिल्कुल
0: के हाथ धो लीजिए और अपना हाथ उस नैपकिन से, अपना जो रुमाल आप लेके गए हैं, आप उस रुमाल का प्रयोग करें। तब ना बहुत सारे कपड़े हमारे घर पे यूं ही हम फेंक देते हैं। जैसे पहले हमारे जो कुर्तों के कपड़े बच जाते थे, हमारे जो चुन्नी होती थी, तो चुन्नी के जो कपड़े होते थे, तो हमें उन्हें ऐसे ही फेंक दिया करते। आप उनका सुंदर से कटिंग करके, उस पर छोटा सा एक रुमाल का वो बड़ा
1: हाँ
0: कशीदाकारी करके, आप एज अ रुमाल की तरह या रफ रुमाल की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें सखियो, साथ में अपना रुमाल कैरी करें। और एक और काम करना है, घर से पानी का बॉटल जरूर कैरी करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक की ग्लासों का प्रयोग कम से करें। तो एक शुरुआत तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है लोग शायद मजाक भी बनाए आपका, पर कोई बात नहीं, कुल खुद को तो सुकून रहेगा कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस धरती माँ को हम माँ कहते हैं, उसकी सफाई में हमने एक छोटा सा योगदान दिया। अब तमन्ना
1: बिल्कुल,
0: आपकी बारी, अब बताओ आप क्या टास्क लोगी?
1: कोई टास्क तो नहीं है ऐसे, मैं कहूंगी ये मेरी डेली रूटीन है, ये मेरा हैबिट बन चुकी है अब।
0: जी
1: एक तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। हर तीज त्योहार राजस्थान में बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, और हर रिचुअल में कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी सास ने हमें एक चीज बोली है जो कि हम लोग, हमारी पूरी फैमिली ही उसे फॉलो करती है, कि अगर कभी भी हमें पानी का कहीं यूज करना हो तो हम वो एक ही सिंगल पॉट में, जैसे हम लोग कभी कुछ पानी में विसर्जित भी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हम उसको इस रीयूजेबल फॉर्मेट में करते हैं। उसी पानी को हम बाद में पौधों में भी डालते हैं
0: क्या बात
1: ताकि
0: है।
1: कचरों को साइड में किया जा सके, और सूखे और गीले कचरों का जो वो रीयूज रीसाइकल होता है, उनसे जो खाद बनती है, वो हमारे घर में आज भी उस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ एक जो, अब मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि ये हमारा कोई टास्क है, ये हमारे घर का एक ट्रेडिशन, एक एक तरह का, वो क्या बोलते हैं,
0: सभ्यता, संस्कृति।
1: हाँ, सभ्यता, संस्कृति और हमारे काम में डेली दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। वो है कि हम लोग हर प्रतिदिन जितने भी हमारे घर के बाहर जीव जंतु आते हैं, स्पेशली जो कुत्ते होते हैं हमारे घर के बाहर, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको हम रोज नियमित रूप से खाना खिलाते हैं। और हमने उनके लिए अलग से खाना खाने की एक जगह भी बनाई है। हम उनको ऐसी रोड पर कुछ भी नहीं रखते, ये हमारी दादी सास ने बनाई थी, जो रूल्स जो हम लोग सभी लोग फॉलो कर रहे हैं।
0: बहुत खूब तमन्ना। आपको मैं बता दूं कि एक समय था, मेरे घर में आज भी है, कि 2 रोटियां हमेशा निकलती है। और
1: गाय
0: हमारे
1: की
0: हमारे नहीं, जो कहते हैं कि नीचे वाली जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए निकाली जाती है,
1: हाँ
0: और उसके बाद जो नेक्स्ट रोटी होती है वो गाय के लिए निकाली जाती है। मगर आज जो हमारे जो कल्चर, जिसको हम कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कल्चर में, रोटियां गिन के बनाई जाती है। तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे, तुम कितना
1: और हमने इसके बारे में कितनी डांट सुनी है, कोई रोटी गिनता है भला?
0: रोटी गिनता है। पर आज भी क्योंकि घर में व्यवस्था ऐसी है कि मेड आती है, खाना वो बनाती है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो सखियो, ये चलन थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम इसको सुधारें, क्योंकि वो भी जीव जंतु है। अगर हम उन्हें घर की 2 रोटी भी निकाल के देते हैं, तो हो सकता है शायद वो बाजार में कचरा ना खाए, गंदगी में मुंह ना डाले। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: जीव जो होता है वो बहुत संतुष्ट होता है। वो हमारी तरह, मैंने बहुत हद तक नोटिस किया है तमन्ना, कि हम खाना खाने के बाद भी यदि हमारे सामने कुछ अच्छा सा ला के रख दिया जाए ना, हम एक दो बाइट ले लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मगर मैंने जानवरों को नोटिस किया है कि वंस इफ दे हैव फिनिश्ड, मतलब एक बार उन्होंने खाना खा
1: तो वो
0: लिया
1: संतुष्ट
0: तो
1: हैं।
0: संतुष्ट है। आप उसके मुंह के आगे कैसी भी चीज रखो, वो सूंघ के हट जाएगा।
1: हाँ
0: और उनका भी एक समय है, आप देखिए, भरी दोपहर में आप ले जाके चारा गाय को भी दोगी ना, तो वो नहीं खाएगी।
1: बिल्कुल
0: तो कुछ उन, जब वो बिन बोले जीव भी इतना डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल उसमें जनरेशन में कहलाते हैं।
1: और दो तीन हैबिट अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने से कुछ भी चीज़ बदलेगी नहीं, उल्टा आप कुछ अच्छा ही
0: वो
1: करेंगे।
0: कहते हैं ना, ये किया दिया ही आपको पुण्य है, जो वापस रूप में, किस रूप में लौट के आता है ये अपने को नहीं पता चलता। वो तो जब उस दौर से निकलते हैं तो यथायत मुंह से निकलता है।

0: कि यार कुछ जरूर जीवन में कुछ अच्छा दान पुण्य किया
1: बिल्कुल
0: होगा। तो दान पुण्य करने के लिए आप जरूरी नहीं कि बहुत सारे भंडारे लगाएं, मगर आप गायों के लिए चारा की व्यवस्था कर सकते हैं, पानी के लिए कर सकते हैं, और गाय की रोटी जरूर निकालें।
1: और एक कोई ऐसी हैबिट जो आपकी लाइफस्टाइल में आप ऐड कर लें, जो कि सोसाइटी में यानी कि समाज में कुछ एक छोटा सा बदलाव लेकर जरूर आए।

0: बादाम है, हापुस है, तोतापुरी है, और अब तो बाहर के जो वो कहते हैं हाइब्रिड
1: हाँ
0: हाइब्रिड वाले आम भी आ रहे हैं, और कुछ आम तो ऐसे हैं तमन्ना जो हजारों लाखों में बिक रहे हैं। तो यानी आम शब्द अब आम नहीं रहा है ना
1: बहुत खास है वो
0: खास
1: आम को कभी
0: अब
1: कोई आम नहीं कहेगा,
0: है जी
1: ये तो मैं बिल्कुल इसको पर्सनली ले जाती हूँ, अगर कोई आम को आम कहता है तो ये बड़ा ही खास है। और सखियों हमारी हमारी इस बातचीत का बस यही सार है कि आप जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, उनका

0: सारी बातें कर ली, और सब बातें अगर हमारी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाती ना, तो मैं आपसे बहुत नाराज होती लता जी. देखिए सखियों, हर चीज अपनी तरफ, लेकिन गर्मियों का एक सुकून भी है जिसके बारे में मैं पर्टिकुलरली बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, और मुझे बात करनी है. आई थिंक सारी सभी लोग, सारे जितने भी हमारे साथ अभी स्टूडियो में भी मौजूद है, या फिर जो हमारा शो सुन रहे हैं, हमारी सखियों के अलावा भी जो शो सुन रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो रिलेट 100% करेंगे
1: जी
0: कि जो आम,
1: आम
0: ठंडी ठंडी कुल्फी, लस्सी, और ये जो हमारे जो गर्मियों का जो
1: फलों का राजा
0: हाँ ये सारी जो
1: जी
0: खाने को
1: जी
0: मिलता है वो तो सिर्फ गर्मियों में ही इसका आनंद आता है. क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आम भी बहुत तरह के होते हैं, है
0: हाँ
1: ना। और अभी आम आ चुके हैं, लगभग काफी तरह के आम आ चुके हैं, काफी वैरायटी आ चुकी है, लंगड़ा आ चुका है।

0: त्योहार जैसा माहौल होता है।
1: हम्म,
0: इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहां लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑलराइट, so tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger, lion,
2: yes,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: वीर जोरावर की
6: जय!
5: जय जेरापुर, जय भारत!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग

0: आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
1: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
0: जी।
1: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
0: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल।
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
2: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।

0: इंतजार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
0: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
1: शाबाश सारल जंग, मैं खुश हुआ, तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
3: हुजूर।
0: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: जाओ, ले चलो इसको।
0: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
6: व्हाई?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
6: yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: एक्चुअली यू आर अ फूल।
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।

0: Jonathan! What all? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार.

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 3 बज रहे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा।

0: हाँ जी, हेलो जी, हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। आज की शाम बेहद खास है, खुशनुमा भी है। जी हाँ, क्योंकि आज की शाम होने वाला है लाइव क्विज दोस्तों। लेकिन ये हम कब और कैसे खेलेंगे ये बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में। तब तक आप और हम एंजॉय करेंगे प्यारे म्यूजिकल ट्रैक। दोस्तों आज की शाम में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ होने वाले हैं। मैं रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल,
1: और मैं आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज और हर दूसरे और चौथे मंगलवार को होता है हमारा यूथ क्विज, जहां हम पूछते हैं आपसे अतरंगी अतरंगी सवाल और आप देते हैं बड़े प्यारे प्यारे जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम, ये वाणी की इस पहले गीत के साथ।

0: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक शो युव वाणी में। दोस्तों आज आप और हम खेल रहे हैं लाइव क्विज, और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स हैं 02912553300, वहीं दूसरा नंबर है 02912554300।
1: बिल्कुल, तो चलिए अभी लगता है हमारे साथ एक लिसनर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हमारे युवानी कार्यक्रम में। आज हमारा क्विज
2: थैंक
1: चल
2: यू
1: रहा है।
2: डॉली मैडम को, रिधि मैम को, दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
1: वेलकम टू युवानी सर। अब आपके लिए आज का हमारा ये पहला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ, रिनोसेरस।
2: और रिपीट करेंगे एक बार वापस।
1: पृथ्वी पर सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ, राइनोसेरस।
2: ब्लू वेल हो सकता है जहां तक मुझे जानकारी है।
1: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लिसनर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और वो नंबर है 02912553300 या फिर 02912554300।
0: दोस्तों देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़े हैं।
1: तो ऐसे ही कॉलर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और होती रहेंगी बातें, और पूछेंगे आपसे प्यारे से सवाल, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शानदार से म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब लौटते हैं आपके लाइव क्विज की तरफ और देखते हैं अगले कॉलर कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: जी, नमस्कार, मैं रामलाल बिश्नोई बोल रहा हूँ जी।
0: जी, तो क्या आप रेडी हैं हमारे साथ क्विज खेलने के लिए?
1: जी बिल्कुल मैम, जी तैयार हूँ मैम।
0: तो आपका सवाल यह है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं मोर, गोडावन, तोता या कबूतर। बिल्कुल सही जवाब।
2: क्या बात है, इसी के साथ
3: बिल्कुल इसी के साथ चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल

0: है, विच कंट्री इन्वेंटेड फ्रेंच फ्राइज, यानी कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपकी ऑप्शंस है फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम या इटली।
1: फ्रांस
0: क्या आप श्योर हैं?
1: जी।
0: आपका ये जवाब गलत है, इसका सही जवाब है बेल्जियम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो चलते हैं इस सफर में आगे।
2: लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शानदार से म्यूजिकल ट्रैक के बाद अब देखते हैं कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो।
1: प्रज्ञा, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास आज के।

0: प्रोग्राम के लिए। लेकिन मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछती हूँ कि आज का जो दिन है, वो मंगलवार का जो दिन है, वो तुम्हारे लिए कैसे खास है?
1: मेरे लिए खास है क्योंकि ये एकदम मंडे ब्लूज के बाद जो हम टैग देते हैं मंडे ब्लूज, उसके बाद जो मंगलवार का दिन आता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे धीरे वीकेंड की तरफ बढ़ने लगा। और इस हफ्ते तो एक छुट्टी भी आ रही है।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल, हम जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो 5 दिन की में एक दिन छुट्टी मिल जाए ना तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉली आप और हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कॉलर को ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
2: नागेश रोहित खेतेश्वर सर के घर में था, सेशन देने के लिए
0: हेलो
2: आया। हेलो
0: हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: नागेश रोहित।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में। अभी चल रहा है हमारा यूथ क्विज, जहां आपका ये रहा आज का पहला सवाल।
1: तो आपका पहला सवाल है, वो है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, CO2, H2O या फिर NaCl?
2: हाइड्रोजन एस टू ओ टू।
1: आप जरा सा फिर से बोलेंगे?
2: मैडम, हाइड्रोजन एस टू ओ टू।
1: जी नहीं, ये गलत जवाब है। इसका आंसर है H2O।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही और भी लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी इस नंबर पर। वो नंबर है 02915253300 या फिर 02915254300। लगता है प्रज्ञा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। हेलो
2: डॉक्टर,
0: हेलो
2: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार।
2: मैं गांव चौकड़ी जिला जोधपुर नसीबी पास से धारूराम मेघवाल बोल रहा हूँ मैडम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी के इस यूथ क्विज के कार्यक्रम में, और इसी सिलसिले में आज का हमारा आपके लिए पहला सवाल ये रहा।
1: थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नीम,
2: क्या मैडम,
1: खेजड़ी?
2: मेरे सवाल समझ में नहीं आया।
1: थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं?
2: आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मैडम।
1: तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 02912553300, वहीं दूसरा नंबर है 02912554300। अब और हम खेलेंगे लाइव क्विज, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों, जैसा कि प्रज्ञा बता रही है कि आज हमारा चल रहा है यूथ का क्विज प्रोग्राम, जहां हम दो रेडियो बडीज आ गए हैं आपसे बातें करने के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए। मैं हूँ डॉली और आज मेरे साथ हैं
1: आरजे प्रज्ञा अग्रवाल। दोस्तों देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: अभी मैं नमस्कार,
1: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप जी आप आ गाड़ी
1: जी जी
2: जी मैं गांव मौका से बाढ़ में जिले से बात कर
1: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव क्विज में। तो चलिए आपके साथ लाइव क्विज खेलते हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा या फिर मेजर ध्यानचंद। जी नहीं, ये जवाब गलत है, इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते आपके लिए हम लेके आ रहे हैं ये दूसरा सवाल। और आपका सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस है दमा यानी कि अस्थमा, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस।
3: नमस्कार मैम।
0: हेलो,
3: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैम, सूरज प्रकाश बोल रहा
0: है। बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी के इस क्विज प्रोग्राम में, और आपके लिए हमारा ये पहला सवाल ये रहा। बिल्कुल, आपका सवाल है, वॉट इज द मेडिकल टर्म यूज फॉर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अनीमिया या आर्थराइटिस। बिल्कुल, आपके ऑप्शंस है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, अनीमिया या आर्थराइटिस।
3: हिंदी में तो कहते हैं उच्च रक्तचाप, कहते हैं शायद।
0: बिल्कुल, हिंदी में हाइपोटेंशन को

0: निम्न रक्तचाप, हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप, अनीमिया को रक्ताल्पता और अर्थराइटिस को गठिया। आपका जवाब क्या है?
1: सेकंड ऑप्शन है जो।
0: क्या आप श्योर हैं?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
2: तो आपका अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी?
1: विटामिन डी।
2: बिल्कुल सही जवाब।
0: क्या बात है। तो इसी के चलते आपके लिए लेके आए हैं हम आज का तीसरा सवाल। और आपका सवाल है, कथक बिलोंग्स टू विच रीजन, यानी कि कथक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया।
1: कथक में दक्षिण दक्षिण भारत में है, शायद केरल का है सर।
0: क्या आप श्योर हैं?
1: दक्षिणी भारत में हम श्योर, बिल्कुल
0: जी। नहीं, इसका सही जवाब है उत्तर भारत।
1: क्यों, स्टेट कौन सा है फिर कथक में?
0: कथक उत्तर भारत से डेवलप हुआ है।
1: राज्य तो होगा, राज्य कौन सा?
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी ऐसे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनके लिए वो नंबर है
2: 02912553300 और 02912554300। दोस्तों, आज आप और हम खेल रहे हैं लाइव क्विज, इंतजार कर रहे हैं हम आपके फोन का।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाओं के जबानी युवानी, जहाँ म्यूजिक भी है और लाइव क्विज भी। दोस्तों आज की शानदार शाम में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
1: और मैं आपकी रेडियो हम सफर डॉली। तो प्रज्ञा, क्या हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं?
0: जी हाँ, देखते हैं कौन है वो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: राहुल।
1: क्या बात है राहुल, काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं आप, और ऐसे ही एंथुजियाज्म की ज़रूरत है हमारे युवाओं में। तो आपके लिए हमारे पास आपका ये रहा पहला सवाल।
0: तो सवाल है, स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम?
2: बोलना।
0: स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम?
2: कैल्शियम।
0: कैल्शियम, बिल्कुल सही जवाब।
1: क्या बात है राहुल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और ऐसे ही चलते हैं हमारे आज के इस दूसरे सवाल की ओर। कौन सा पक्षी उड़ते समय भी सो सकता है? विच बर्ड कैन स्लीप वाइल फ्लाइंग? आपके ऑप्शंस है कबूतर, चील, कॉमन स्विफ्ट या तोता।
2: कौन सी?
1: क्या आप श्योर हैं?
2: यस
1: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।

0: तो ऐसे ही बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो नमस्ते।
0: हेलो, नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: पार्वती
0: पार्वती, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: किचन गांव से।
0: अच्छा, आज हमारे इस युवाणी के क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है, और आपके लिए ये रहा हमारा पहला सवाल।
1: तो पहला सवाल है, राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या फिर कलहारी डेजर्ट? क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा डेजर्ट स्थित है? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट।

0: या फिर कालाहारी डेजर्ट?
1: हेलो,
2: हेलो,
1: क्या आपने हमारा आपके लिए जो पहला सवाल था वो सुना?
2: यस मैम.
1: तो आपका जवाब क्या है?
2: हाँ,
1: क्या आप श्योर हैं?
0: बिल्कुल
2: यस.
0: सही.
1: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका ये रहा दूसरा सवाल। सवाल है, किस जीव के तीन हृदय होते हैं, यानी कि विच क्रिएचर हैज थ्री हार्ट्स? आपके ऑप्शंस है स्टारफिश, ऑक्टोपस, वेल या क्रैब। हेलो,
2: हेलो.
1: आपका दूसरा सवाल है, किस जीव के तीन दिल यानी कि तीन हृदय होते हैं? आपके ऑप्शंस है स्टारफिश, ऑक्टोपस, व्हेल या क्रैब। आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है ऑक्टोपस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. बस करना क्या है, फोन उठाइए और डायल कीजिए नंबर 02912555300. वहीं दूसरा नंबर है 02912555430. आप और हम खेल रहे हैं लाइव क्विज, लेकिन अब ये सुनते हैं कि म्यूजिकल ट्रैक.

0: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो योर वाणी। तो हमारे साथ देखते हैं अगले कॉलर कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार
0: हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी। प्रकाश सागला पिपाशेटी से। हाँ
0: जी, तो आपके साथ खेलते हैं हम लाइव क्वेस्ट। आपका पहला सवाल है, चेकमेट टर्म किस खेल में प्रयोग होता है? चेकमेट टर्म किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट, चेस, फुटबॉल या फिर टेनिस?
1: फुटबॉल।
0: जी नहीं, इसका आंसर है चेस।
2: बुलबुल के थक गया। क्या
3: हुआ?
2: नया किडबैक चाहिए। करेक्ट।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
0: दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव प्रोग्राम में। तो हमारे नंबर है 02912553300। वहीं दूसरा नंबर है 02912554300।
6: क्या बात है प्रज्ञा, अभी हमारा चल रहा है क्विज़ प्रोग्राम। ऐसे ही क्विज़ प्रोग्राम कई बार जब हम स्कूल में होते थे और असेंबली में हमारा नंबर आता था, जब हम पूछते थे, हमें कुछ जैसे वर्ड बोलना होता था या फिर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बोलना होता था, कितना कितने इंटरेस्टिंग थे वो दिन।
0: बिल्कुल। तो डॉली, हम अपने अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो
6: हेलो हेलो,
7: हाँ,
6: आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: अमृतसर से बोल रहे हैं।
6: बहुत बहुत
7: मेरा
6: स्वागत
7: नाम
6: है
7: है
6: आपका
7: हाँ
6: युवाणी के हमारे इस यूथ क्विज प्रोग्राम में। और आपका पहला सवाल जो है वो है ये, कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहाँ चींटियां नहीं होती हैं, यानी कि चींटियों से रहित महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। हेलो,
7: एशिया।
6: क्या आप श्योर हैं?
7: हाँ
6: आपका ये जवाब गलत है। सही जवाब है अंटार्कटिका।

0: वेलकम बैक टू यू वाणी दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा यूथ का क्विज प्रोग्राम चल रहा है, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो,
1: हाँ,
0: आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अरविंद चौधरी सालोदी से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारा जो पहला सवाल है आपके लिए वो है ये,
2: तो सवाल है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं, 5, 6, 7 या 8?
1: मैम, क्या आप ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर सकती हैं?
2: जी बिल्कुल, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं, 5, 6, 7 या 8?
1: छह।
2: जी नहीं, इसका आंसर है 7। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।

0: तो दोस्तों, गानों की इस प्यार भरी म्यूजिकल ट्रैक के बाद देखते हैं अब कौन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। तो अपना नाम बताएं
1: श्रवण सिंह चांद समझ।
0: जी। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ लाइव क्विज खेलने के लिए?
1: हाँ
0: तो आपका पहला सवाल है, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? 4, 5, 6 या 7?
1: पांच।
0: 5, बिल्कुल सही जवाब।
2: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी सिलसिले में आपके लिए हमारा ये दूसरा सवाल। आपका सवाल है कि समुद्री जीव के पास दिमाग और दिल दोनों ही नहीं होते हैं, और आपके ऑप्शंस है शार्क, ऑक्टोपस, जेलीफिश या स्टारफिश।
1: स्टारफिश
2: क्या आप श्योर हैं?
1: श्योर।
2: आपका जवाब गलत है। सही जवाब है जेलीफिश।

0: तो डॉली, आज हमने हमारे श्रोताओं से तो ढेर सारे सवाल किए थे और हमने लाइव क्विज भी काफी एंजॉय किया, तो क्यों ना एक सवाल तुमसे हो जाए।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: तो वो सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा वाद्य जुड़ा है? सितार, गिटार, पियानो या फिर ड्रम्स?
1: इसका जवाब काफी सरल है। इसका जवाब है सितार।
0: बिल्कुल सही जवाब।

0: सॉरी, जैसा कि तुम बात करी थी कि हमारे बचपन के क्विज के बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बचपन में जब क्विज होता था तब हम थोड़ा सा डरते थे। लाइव क्विज हो या फिर सरप्राइज टेस्ट हो, हम उनसे कभी ना कभी डरते तो थे।
1: बिल्कुल। और अगर वो मैंने जो बात कही थी कि असेंबली में हमें जाके सबसे आगे बोलना रहता है, जो भी कोई वर्ड होता है या क्विज या सवाल जो पूछना होता है, वो बहुत डरावना सा दिन होता था,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सबके सामने आप जाके बोलोगे, उसमें काफ़ी हिम्मत चाहिए।
0: पर धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमारी लाइफ का एक एक पन्ना ऐड ऑन होता गया, वैसे वैसे हमने कॉन्फिडेंस डेवलप किया। उस डर को फेस करने का जो कॉन्फिडेंस हमने डेवलप किया वो आज तक जारी है। दोस्तों, हम कहीं ना किसी बात से डरते हैं, खुद को एक स्टेप बैक करते हैं, पर किक तभी मिलेगी जब हम खुद को चैलेंजेस देंगे और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा तुमने। तो आज का हमारा जो ये सिलसिला था बातें करने का, सवाल पूछने का, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने का, वो यहीं तक था।
0: तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नई शाम में ढेर सारी चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों से प्यार करिए। आज के इस शो में हम दो रेडियो बड़ीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मेरे रेडियो साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे युव वाणी, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मूज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर

0: पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a higher-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner, along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from the Red Fort last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remain crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jayashankar emphasized that

0: The US will be hosting Quad Partners later this year for a fuel security forum to further expand this. In his joint press statement, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi emphasized the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz, as well as bringing stability to West Asia. Australian Foreign Minister Penny Wong said, Quad has announced the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership. The Quad Foreign Ministers Meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for the ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. Addressing a press conference after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said the meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
1: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies. And four, humanitarian assistance and disaster response.
0: On to sports. The playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final. And that is the end of this news bulletin.
2: Medium wave 564.97 meter यानि 531 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय शाम के 6:10 में है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में हम आपको सुनवाएंगे आज की सभा के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का की प्रसारण का प्रसारण समय और उनकी जानकारी। सबसे पहले एक नजर आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:15 पर सामयिक स्वर में आप सुनेंगे देशगान। हर शाम 7 सजती है चौपाल, तो सुनना न भूलिएगा सीमा डेरी गूंज। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे रात 8 और रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। श्रोता अपनी पसंद की फिल्म गीत सुन सकते हैं मन चाहे गीत में अपने ईमेल्स के जरिए। ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम मन चाहे गीत हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:00। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिन की शुरुआत होगी श्री रामचरित मानस से सुबह 6:05 पर। सुबह 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनना ना भूलिएगा। हर रोज सुबह लेकर आते हैं हम आप

का अपना कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन नमस्कार सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुबह 10 और दिन में 12। सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:30 पर और दिन में 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनवाया जाएगा रात 10। दिन में 1:15 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम गणगौर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करेंगे दिन में 2:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम दिन भर आप सुन सकेंगे निर्धारित समयों पर। ये था कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की पर एक नजर।

आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। आइए सुने देश गान।

0: समूह स्वर में ये देश गान अभी आपने सुना। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायाः अध्यक्षता कृता। क्वाड समूहेन स्थिर सुरक्षित ऊर्जा स्वीकरणाय प्रतिबद्धता प्रकटिता। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रतिक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः राजस्थानस्य सांचो सीमास्थाने गतवान्। राज्यस्य सीमक्षेत्रेषु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इत्यस्य आरम्भम् अकरोत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाः प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर 1 क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री बेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। सभायाः अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् डॉ जयशंकरः क्वाड राष्ट्रेषु सहयोगं सुदृढीकरणाय परस्परं साहाय्यं कर्तुं च अवधानं प्रदत्तवान्। सः अवदत् यत् क्वाड देशाः मुक्त समाजाः सन्ति, ये समृद्धेः विकासस्य च अन्वेषणे नवान्वेषणे च सृजनात्मकतां पोषयन्ति।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतंत्र रूपेण, बहुवादी समाज रूपेण, आपण अर्थव्यवस्था रूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतंत्रं मुक्तञ्च हिन्द प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्तराज्यम्

0: विश्वात् कोटिशः जनाः अद्य साउदी अरेबिया देशे हज यात्रां कुर्वन्तः सन्ति। ह्यः पञ्चदिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रायाः आरम्भः लक्षशः हज तीर्थयात्रिणः मीनानगरे रात्रिं व्यतीतवन्तः। अधुना ते अराफात क्षेत्रे मुख्य हज अनुष्ठानार्थं प्रार्थनार्थं च समागच्छन्ति। ते तत्र पूर्णदिनं यापयन्ति, प्रार्थयन्ति च। तीर्थयात्रिणः निमरा मस्जिद इत्यत्र खुत्बाय हज अर्थात हज प्रवचनं श्रुतवन्तः। ततः सायंकाले ते मुजदलीफा नगरं प्रति प्रस्थानात् प्राक् अपराह्ने सायंकाले च संयुक्तरूपेण प्रार्थनां कुर्वन्ति। भारत ऋतु विभागेन अद्य दिल्ल्याम् उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्याम् उष्णतरंगस्य स्थितिः श्वः पर्यन्तं यथावदेव भविष्यति इत्यपेक्षते, यत्र अधिकतमं तापमानं 44 षट्चत्वारिंशत् डिग्री सेल्सियस परिमितं यावत् भविष्यति। अद्य हरियाणायां चण्डीगढे, पूर्वी मध्यप्रदेशे, पंजाबे, उत्तरप्रदेशे, विदर्भे तथा पश्चिम राजस्थान राज्ये च तीव्र उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमितम्। अत्रान्तरे अद्य श्वः दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः केरलराज्यं प्राप्स्यति इत्यपेक्षते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य प्ले ऑफ क्रीडायाः क्वालिफायर वन क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं धर्मशालायां सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
2: मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
3: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
2: गृहमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1,096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधा सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र

0: में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम

0: परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज जिला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो। और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यह बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं।

0: दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने घड़साना थाने के एसआई रामेश्वर लाल को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और एएनएम भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57.76 मीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू हैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी किन्नो। और प्रदेश रा कई हल्का माय लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगती पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार किन्नो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन शुरू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर के बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे रखी जा प्रहरी सम्मेलन में बोल रहा है। वे कहो कि ई ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकत मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथे बसियोड़ा गांव रा लोगा नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजनावा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हलका माय ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माय शुरू करतियो चावेला। गृहमंत्री कहो कि प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊं बीएसएफ रो सुबितो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृहमंत्री सरहद 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो कि साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलान और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ों रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहले गृहमंत्री सरहद माथे तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए वारा योगदान री सराहना कीनी। इ मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलाओं सारू नूवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृहमंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकारा हुई बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माए फी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। इ पाछे वठे जहाज उड़ान भरण लागेला। हवाई अड्डा दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू फैचावेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रे बारा माए विचार करण सारू ही कहो। ध्यानजोग है कि 1088 एकड़ हल्का माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री 3 विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो कि आ हस्तियां रा मान राजस्थान रो माथो ऊंचो भयो है। ध्यानजोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही श्यामाए राज्य रा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने

0: किरण जी, देखो गर्मी रो टेम है, इन गर्मी रे बकत उम्मीद करा के मौसम में आवे बदलाव, और थोड़ो बायरो जको है उ में ठाट बाप रहे, तो चाहे वो गांव वो कस्बो वो चाहे शहर वो, सबने अब उड़ीक है उन बरसात री जिणसू की, आ तपती धरती आ तपता धोरा जका है, मैं ठंड बाप रे मौसम में बदलाव आवे।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, देखो कि मौसम में बदलाव री तो आपा उम्मीद करा हाँ, पर आज री तारीख में तो देखो काले हूं लागो है नौ तप। नौ तपो यानी कि अबे आउन वाला नौ दिन और आउन वाला अगला दिन भी बहुत तेज और तीक्ष्ण गर्मी वाला वेला, और इन गर्मी सु निपटन रे सारू गुरविंदर जी बहुत जरूरी है कि जो जल है उनने संरक्षण रे प्रति आपा सचेतवा, एक अभियान रे रूप में आपा इनने जिंदगी रो पहलो मकसद बनावा, प्रत्येक मनुष्य ने इन चीज रो उत्तरदायित्व और इन जिम्मेदारी रो वहन करनो पड़ेला कि यदि आपने जीवनो है, यदि आने वाली पीढ़ियां सरोकार राखनो है तो आपने जल रो संरक्षण करनो पड़ेला और इन एक अभियान रे तहत जो है आपने लेनो पड़ेला।
0: किरण जी, देखो के मैं नो तपेरी जके दिनारी बात है नी, वो ने टालन री कोशिश करी के भाई आपा तावड़े ने याद ही नहीं करा, गर्मी ने आपा महसूस ही नहीं करा, तो गर्मी थोड़ी कम लागे। लेकिन अब 9 दिन जका तपत्रा है थे बात कई पौनी री, तो जका अपना परंपरागत जल शो था वे भी ओले ओले आपा उए ने पीवन लायक पानी छोड़ियो कोनी, नाडिया ही या कटे तालाब हा पानी भी सार संभाल आपा ढंगू करी कोनी। पश्चिमी राजस्थान रे मायने जको इंदिरा गांधी नहर परियोजना रो पानी आयो नी, उनसु लगभग पेयजल री जकी समस्या आई वो काफी हद तक वह समस्या दूर हुई, और अब घर घर टूटी पुगाउन रो काम भी सरकार रो है। तो देखो किरण जी, सरकार कितना भी प्रयास कर ले कठे न कठे नागरिका ने भी जरूरत पड़ी कि बेवे जाग होवे, और जका घरे मायने टाको बनियोडो है, बरसात रो पानी आवे तो पालर पानी उन टाके ने भरे। जल सीमित है, जल है तो कल, और जिन तरह धरती में जो गांव में ट्यूबवेल बाने बहुत अच्छी तरह ठा है कि हर साल एक डांगड़ो नीचे उतरे, यानी लगभग 20 फुट पानी जो है वो नीचे जा रही हो।

0: तो भाई इकट्ठे इकट्ठे तो वो खत्म हो ही इन वास्ते भाई लोग निवेदन है कि जल है तो कल है और जल ने जरूरी समझ उगेरी बचत करो।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, देखो कि काले यानी कि जो सोमवार गियो काले वो गंगा दशमी ही 25 तारीख सु लेन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक जो है सरकार जो है जल संरक्षण अभियान चलायो है, जिन महीने की प्रत्येक नागरिक ने जुड़न री आवश्यकता है और

नागरिक ने जुड़न री आवश्यकता है और ओ देखनो पड़ेला कि जल संरक्षण नो मतलब मात्र ओ नी है कि आप जो बारिश रो पानी है आप रो टांको भरलियो हर क्षेत्र में आपने जो है जल संरक्षण रे प्रति सावचेत रहनो पड़ेला जू है कि आपरे गांव रे आसपास में है आपरे शहर में जो भी जल री संरचना है कोई नदी है कोई तालाब है कोई नाडी है कोई बावड़ी है कोई कुओ है कोई बेरो है तो वहां रो जीर्णोद्धार वे जटे आप कचरो नाग दियो है वहां ने पुराना समझ ने कि भाई ईरो तो अबे कई काम में नहीं ले रिया हाँ तो उन्हें आपा जो बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दियो है उन्हें काम में लेउंडे सारू आपा ने जो है उचित श्रमदान करनो पड़ेला वहां रो जीर्णोद्धार करनो पड़ेला वहां ने इन तरीका आपा ने तैयार करनो पड़ेला कि आउन वाला समय में ये जो जल संरचना है ये पाची जो है यहाँ जल स्तर बढ़ सके और भविष्य में जो है आपने जल री आपूर्ति कर सके।

0: बेरा बावड़ी कुआ अगर कटे आपरे क्षतिग्रस्त है तो वहां जीर्णोद्धार करण जो उद्देश्य है वो इरे तहत है। इरे साथे साथे जो भी आपरा जल स्रोत है आपरे गांव में आपरे शहर में पुराना नया जितना भी जल स्रोत है वहां प्रदूषण से मुक्त करना बहुत जरूरी है।
1: भाई लोग नाडी है चाहे तालाब है चाहे जो भी परंपरागत जल स्रोत है वे में प्लास्टिक जिन तरह आप शामिल कर रही है तो भाई जल स्रोत रहे इसको नहीं भाई तो प्लास्टिक री नाडी बन गई। तो इन वास्ते है कि जल जितना भी स्रोत है वहां प्रदूषण मुक्त करा गंदगी मुक्त करा प्लास्टिक मुक्त करा वो भी एक बहुत लूठो उद्देश्य है।
0: और गुरविंदर जी मैं अबार आजकल यहाँ दिना में देखी है आप सोशल मीडिया माते देखो या टीवी माते देखो तो आज जो नूवी पीढ़ी है नी वहा जो है इन प्रदूषण से मुक्त करने सारू जो भी अपनी नदियां है तालाब है इरे सारू बहुत आगे आ रही है श्रमदान कर रही है लोगों ने जागरूक करने प्रयास कर रही है कटे न कटे जो नई पीढ़ी ने इन चीजों आभास है कि जो अपना पारंपरिक जल स्रोत है एज जो है आपने जीवन देवेला परंतु हाल भी लोगों ने मायना जागरूकता नहीं आप अभी भी जो घर रो कचरो है उठाना आप नाडिया में फेंक दा तालाबा में फेंक दा प्लास्टिक में पूरा
1: बावड़ी वे हम शहर में कटे बावड़ी खुदियोड़ी है तो वह बुरी गी।
0: बिल्कुल
1: किरण जी बात कही के जकान युवा है मोटियार है स्कूल और कॉलेज जाऊन नाला वे इन चीज ने बहुत थमचे क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई। जब वे दुनिया रा दूजा देश आ रही फोटवान वीडियो वाणी स्वच्छता वे देखे नी तो कठिन कटे बाणे ये में वे के आपनो देश जो भारत है वो भी इन तरह साफ सुथरो स्वच्छ रहे अठेरा जका जल स्रोत है वे भी एकदम शुद्ध रहे इन मुजब वे आप री जटकटी भागीदारी हुए उठे निभावेर कौन मतलब है देश रो जो को भार है इन युवा पीढ़ी माते है। अगर युवा पीढ़ी इन तरह रा काम में बढ़ चढ़ हिस्सो ले तो निश्चित है कि सन 2047 विकसित राष्ट्रीय जकी अवधारणा है विश्व गुरु री जकी आपणी अवधारणा है वह परिपूर्ण हो।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी और एक चीज कठिन कटे परेशान करने वाली है कि आपा अपने जितना ही नदी रा स्रोत है वहां ने माता कहवा गंगा मैया है या यमुना मैया है और भी जितना आपरे आस पड़ोस में जो भी जल रा स्रोत है कटे न कटे आपने जो है आस्थाओं जुड़ियोड़ा है अपने परंपराओं जुड़ियोड़ा है उन्हें बावजूद भी आप बटे इतनी गंदगी फैला रहा हाँ तो आज सोचने की बात है कि जिन्हें आप मारे समान दर्जो प्रदान कर रहा हो और उन्नी जो स्थिति है आपा इन रूप में कर रहा हाँ।

0: भाई लोग 25 मई उलेन 5 जून 2026 यानी गंगा दशमी उलेन विश्व पर्यावरण दिवस तक 10 दिना पूरे राष्ट्रीय अभियान है जल संरक्षण जन अभियान 2026 ईयर नाम राख्यो है। और भारत सरकार इन कार्यक्रम में राज्य सरकार भी बरोबर री भागीदारी है। इन अभियान रे बहुत लूठा उद्देश्य है। खाली वो अभियान यू ही नहीं है कि भाई इन अभियान जागृति भी लानी है, लोगों में चेतना भी लानी है। और बिंदुवार किरण जी बताओ कि कई कई प्रमुख उद्देश्य है।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, देखो जो मैं एक बात करी कि जो भी अपनी जल संरचना है वो आरो जीर्णोद्धार यानी कटे आप रे बेवा

0: इन्हें साथ साथ गुरविंदर जी देखो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है वह लोगा रमाई ने लाणी ओबी इन जो है अभियान प्रमुख उद्देश्य है। और साथ साथ भूजल पुनर्भरण हेतु जागरूकता लाणी, देखो कि बरसात रो पानी आवे गुरविंदर जी और इतनी बड़ी तादाद में जो पानी आवे वो व्यर्थ जावे प्रो इरो कटे संरक्षित आपा नहीं कर पावा, आपा न ही इन भूजल ने जो है कि इन्हें पुनर्भरण आरू आपा कि भाई अपना वेरा है नदियां है बावड़िया है इन तरह आप प्रावधान करा ताकि जो है जमीन में भी जल स्तर बढ़े और आपका जल स्रोत है ए भी यहाँ जो है पुनर्भरण वे सके।
1: किसान भाइया गाँव रे मायने आपने दोरा पाली स्कीम उठाई जाए तो ये मुख्य उद्देश्य है कि आप रे खेत में जो को बरसियोड़ो पानी है वो बेन व्यर्थ नहीं जावे, इन वास्ते दोरा पाली करन आप रे खेत रो पानी जो को है खेत में ही रख सको। और ये सब लोग अगर यूं करे नी किरण जी तो उन क्षेत्र रे मायने जल स्तर भी ऊपर आवे।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, और साथ साथ व्यवहार परिवर्तन लाणो जल रे उपयोग रे क्षेत्र में एक बहुत बड़ो उद्देश्य है। आज भी भारतीय नागरिका में आपने ध्यान है कि पानी री कई स्थिति है, कई जगह लोगों ने पानी मिल नहीं रियो है, गर्मी में पानी री कमी है, उन्हें बावजूद भी जिन्हें पानी आ रियो है आप नल खोल रहा हो पानी ढूल रियो है गुरविंदर जी, और क्योंकि नला में पानी आ रियो है तो पानी रो दुरुपयोग भी धापन वे रियो है।
1: टूंटी आवे जट तक टूंटी बहनी चाहिए, कई लोग कई घर परिवार आदत पड़गी शहर रे मायने जब की पानी बहुत सीमित है और घंटे दो घंटे बारी रे हिसाब आवे तो अमूमन आप देखा कि जब ही पानी आवे उन टाइम कई तो आप री बारे पाइप लगान गाड़ियां धोवे और हेर में हैंग जका दाडी करे मिनक वन टूटी बेवती रहे।
0: बिल्कुल,
1: अरे भला मिनका जको काम एक लोटे हो सके उए रे वास्ते एक बाल्टी क्यों खर्च करो, और पानी आप रोई है इन प्रकृति रोई है और ये रो संरक्षण भी आप नहीं करनो है।
0: बिल्कुल सर, आदत आपने आदत में व्यवहार में चीजें लेनी पड़ेगा ताकि आपने आदत ही जाड़ी पड़ जावे कि आप पानी रो संरक्षण कर सका।
1: बड़े कई उद्देश्य है इन जन अभियान रा,
0: और इरे साथे साथे देखो कि भाई हरियालो राजस्थान री तैयारी यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधा लगावा उन्हें बड़ा करा वारी पूरी सार संभाल करा, और हरियालो राजस्थान री जो तैयारी है वह भी जो है इन मुख्य उद्देश्य।
1: भाई लोग यू तो 25-5 दिन है 10 और विश्व पर्यावरण दिवस ने वो अभियान समाप्ति हुई, लेकिन कठे न कठे आपने अभी राखनी है कि आउनाले मानसून रे महीने आप ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगावा ज्यादा ज्यादा दरखत लगावा जो को आपनो हरियाणा राजस्थान रो जो को सपनो है वो पूरा होवे।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी के आपकी जो अभियान रही तो 10 दिन में सरकारी अभियान तो वे जाई पर आज जागरूकता लोग हमें आनी चाहिए कि ए जो उद्देश्य है आपने प्राप्त करना जरूरी है। इन्हें साथ साथ जल संचय रे महीने जो है जनता री भागीदारी

हरी वेणी भी बहुत जरूरी है। तो आती चौमासारे महीने कीकर जल रो संचय करनो है, कीकर जल रो पुनर्भरण करनो है, इन सब चीजा रे सारू आप में जागरूकता वे और इरो उपयोग आपा जो है व्यवहारिक रूप में कर पावा।

जल संरचना जितनी भी अपन आसपास है उमारी स्वच्छता राखनी तो इन हेतु जो जागरूकता है वह भी अपन में बेनी जरूरी है कि आपरा जल सेतु है वह साफ सुथरा रहे उमारे मायने गंदगी नहीं रहे जदीज आप उन पानी रो सही उपयोग कर पाओला। जल बचत करनो, जल ने बचाएन राखनो और हर बूंद बूंद जो जल है उरो आप संचय कर सका और सही उपयोग में ले सका इन उद्देश्यों जो है वो अभियान चल रियो है। और भाई लोग इन्हें आपने आदत में लेनो है, व्यवहार में लेनो, एक दिन आरू नहीं वो अपने स्वभाव में चाहिए।

0: ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज ने सीखे और जल रो जो है आप संचय और संग्रह कर पाऊं।
1: कार्य भूमि लेन मातृ भूमि इन अभियान री मायने हर बूंद री कीमत आपने ओळखनी है, हर बूंद ने आपने बचावनो है। अरे किरण जी हमें अताई गणी गिन कार्यक्रम रो भगत हो रियो है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई
0: और किरण ने दिराओ सीख
1: राम राम, राम।

अभी आपने सुना चौपाल कार्यक्रम। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने सीमा रेरी गूंज।

0: फाटक ओ दादीड़ी मैं आवारा कौन है
1: मैं हूँ ना
0: आवरी कमरे कमरे में आवरी भाई ठाडो कमरो है मैं मारे पुल लागो तो बारे
1: नौल बनी उड़ेट क्यों
0: अरे नीम उड़ेट है भाई नौ तपो है मैं तो कह दियो नी के मुंडो ही बारे को काटू
1: अरे कूलर ही बार लगा दो
0: नहीं मार को लगा उड़ो मार मार छो मार मैं तो मारा टी बैठो भाई
1: अरे नीम उड़ेट
0: अरे नौ तपो है तपे कर दो है गाड़ू तो ये हमेश जिके जिको तावड़ो पड़तो नी उनु है जिको आजकल है जो हल्लो पड़न जुगो और दो नव तपो है जो कह के भाई देखे नौ दिन तो आप रे कह जाप दे मेरो ठाडी सी जीमो ठाडी ठोड़ मत बैठो और कह नहीं कि भाई देखे कि माँ तो ढकीड़ो राखो और लूरा लपर का लगे गुदी कहे कह नहीं कह वो होगी उन्नी
1: तो नौलबा मैं थोर लेना ही ठंडो ठंडो मती रो
0: मटीरियल लाइज के कौन भाई
1: मटीरियल नौलबा पानी कमी नहीं हो वैसे
0: हां ना ना मटीरियल हो है जो निने काल जी खाऊं
1: हां
0: क्योंकि कल एक भड़ल कोई है राम निवास और राम दीन जी नया नहीं
1: हां
0: बे है जो को मटीरा खा सल्ला या तो पर मैं क्या भाई की कोनी है वो ठाडो कर दियो नु पहले तो कौन करियो
1: हां
0: के कुंडे में भिजो दिया
1: कि न मटीरा ने
0: हां पढ़िया दिया कहीं भी भाई देखे आज कौन टक्कर दे क्या कोई चीज है जो क्या इज्जत से लगा दे कोई की कर दे
1: हाँ, तो,
0: ना उन पानी में पढ़िया रह गया पर जो हूँ है जो को भाई देखे बढ़िया गन्नो ले चार गुण चार लड़ो कान भिजो परोन बारी में मेल दियो
1: अरे फ्रिज बना दियो हाँ
0: अरे दिनों के हूँ फाड़ियो रात तो लाल हो
1: हाँ।
0: मिश्री चढ़ो मीठो जब मत्ती रो खाओ तो खाओ तो मार मन में आई
1: हाँ।
0: मत्ती रो कह मत रो मत रो मत्ती रो मत्ती रो
1: थान नौल बा हुनी जो की कर मत्ती रो क्या
0: यो की कर क्या यो बस मुंडे मेल भी भाई देखो एकदम हेम भेज रो ठाडो
1: हाँ।
0: बात है भाई बाकी

0: नऊ तप है
1: जगह
0: के उसमें बड़े रखे हो दो मूसा दो कातरा दो तीडी दो ताओ दो यारा भादी जल हरे दो बिसरे दो बाव आ बात कही
1: नौ
0: दिन है जो देखे कल 25 तारीख है जो और नव तपो हरू हुई हो
1: आज दूजो दिन है
0: ठीक है नी तो ऊंदरा दूजा है बे तावड़े हूँ है जो ठंड लाग गई कातरा ठंड लाग गई टिड्डी है जो कटी कोई इंडा दीड़ो है तो बेई ठंड लाग गई और थोड़ा घो बारे कर बारे में कोई फेरी कर तो ताव तपी आई समझिया नी
1: ठंड
0: हो सके हाँ लापरवाही करी भुगती और देखे के भाप है बिच्छू है कोई ऐडा जिनावर है नी जका कह भाई आप रे बिल्लो बारे आई तो बेई ठाड़े लागी और भड़क दूजी तीजी बात है जो भाई देखे कह नुस्कान पुगो नालो जीव है जको किसान रे फसल ने बर्बाद करे किसान ने जो है कटी नुस्कान पुगा दे मान लो देखे हल खड़ती कोई हाँप खा जा पल्ड खा जा तो कुदरत कहीं है भाई आप रो फैसलो करे आ बात है बन के हम जेठ साठ रात क्या नहीं दिन रहा है जेठ है जो है जो दो होगा हमके तो परिक्रमा हरु हुई जो मार परिक्रमा में जानो है विचार करो
1: बकाले हरु होगी
0: अरे होगी तो काले नौ तपो ही नौ दिन है जो परिक्रमा आली
1: तो पूरा नौ दिन देने नहीं
0: ना पूरी मालूम को दीजिए उन मार कर देखे नेड़ो आगो हो ही नहीं जटे हकरो खड़ाई नहीं एकदम कह नहीं भाई देखो बढ़िया हो ही क्या उठे हूँ जा परो मार कह नहीं परिक्रमा पूरी कर
1: पर परिक्रमा एक ला नहीं करनी बड़ी नहीं हाथ ली जाई जो
0: अरे तो हाले तो ना दो कर बात करे हाली
1: हल्ली जाओ तो कौन
0: हल्ली हरदा वह तो हल्ली नहीं हाली तो मारा डाव कौन पे मैं तो एक लू जाओ एक लाया एक लई है जो है ठोड़ आवा जाओ कि मारू मारू भाई ये मात बड़ी नहीं करनी
1: बड़ी
0: हूँ हाथ ली ऊपर जो कट हो तो फिर भीड़ में
1: हो तो की कर फिर कोई गम में थोड़ी
0: लाल रह जा कर जा कटी ना एक जनो तो घर रहना पड़ी नहीं एक तो घर
1: में रह
0: अरे डाणी हुनी नहीं राखड़ी बात
1: अरे मैं रह जाऊं
0: अरे धन भी है वहाँ पर है
1: मैं पानी पाए
0: अरे लारू कोई है जो हाथ साफ कर जाई अच्छे तो कहो एक बार आवन बा कह थोड़ी हिलगा जाओ
1: नहीं नवल बात हो भरोसा को
0: मुई मार को जाऊ नहीं बा मा मार क्या है मार नहीं जा नहीं जानो बात करे
1: नहीं नवल बात जोड़े हूं जानो मैं तो
0: कुछ गीड़ा जोड़े हूं मैं जोड़े हूं जाई है जोड़े हूं जाई
1: ठीक है जोड़ा बड्डी ने कटे नहीं ले जाओ नवल बात
0: बात तो ले जाओ हूं पर कहा ना दियो कि दिन हाथ पकड़ नहीं बैठे
1: कभी क्यों हाथ आल मार
0: बोली रे बोली मैं मारो मगज खराब मत कर दिन पे दिए आगे नव तपो है
1: नौलबा तो ठंडो पानी पियो मैं
0: पियो रे ठंडो पानी मने ओ गीत सुना दो ओ कम अरदास यो गीत नहीं आशा है भाई के मैं बरी जद है बात भली होई है ठीक है नी ओ होना भाई
1: मैं बढ़िया
0: सो को मीठो लागो भाई थारे मुकड़ो गीत नहीं
1: हां
0: हुनती आवती जो मारे कांदा में है जो कह नहीं शब्द बढ़िया
1: हां
0: तो भाई ले होना है
1: होना नौलबा

0: वाह भाई ये वाह कह रही है कि भाई वो बोई भलो है नमे बिकी तुम्हार कोई बात बतावे कौन जलमिया कौन भोत हो या और कह जी को कह नहीं कि भाई मातबर मिन्ने को या देखो आप हमारी कह नहीं जिंदगी ने कह भाई एकदम खोरी कर्म किया बताओ कौन है
1: आज यानी नवलबा अपारे जन्म हो राम किकर बैच जीरो अपारे बंगालू हा नवलबा और एहनी एक भारतीय मूर्तिकार हा एने अपर एनी आधुनिक भारतीय मूर्ति कला रो जनक भी मानो जावे एर एनी नवलबा जी की मूर्ति बनाई होती नी उम एक एनी संभाल परिवार बनायो जिमे एक कृषक जी की परिवार होवे नी उनी झलक होती
0: किसान परिवार
1: हाँ उन अलावा नवलबा यानी मिल कॉल एक मूर्ति बनाई उन महीना पर चावल जी की मिला में दो स्त्रियां काम करती और एक बालक ही उन मूर्ति होती उन अलावा ए नवलबा पर महात्मा बुद्ध सुजाता और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी पोर्ट्रेट बनाई और एने अपारे पद्म भूषण भी सम्मानित करियो
0: ओ ठीक भाई मूर्तियां है जो अपने बनावता
1: हाँ
0: और बनावा है आली
1: नहीं नवलबा
0: हाँ बनावता पुरानी टैमरी बाता ही ना मोटी कलाकारी है कहते कई है जो धातुआ मिला मिला है जो हाथ धातु बनावे तो मैंने कटी दे के दर्शन करे जी हो रो तो एडी कह नहीं की भाई सौ की

0: थरपन गिया तो आने कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा भूल चलावा बड़े
1: बड़े नवलबा आश्रय दिन अपारे जन्म हुयो ये तमिल अभिनेत्री मनोरमा जीरो नवलबा पहला नाम हो तो गोपी शांता उन अलावा नवलबा पर एक हास्य कलाकार भी है और पार्श्व गायिका भी
0: दिखना दे है भाई मद्रासामी।
1: हाँ नवलबा पर तेलुगु कन्नड़ मलयालम तमिल जड़ फिल्म में काम करियो और एना पर पद्मश्रीयों भी सम्मानित करियो।
0: भाई देखे के अदाकार फनकार कलाकार नहीं
1: हाँ।
0: चाहे कटी काम करो मिन चावी है तो आनी कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदड़ेरा भूल चलाऊं बड़े
1: बड़े नवलबा आज अपारे जन्मदिन है सुशील कुमार जीरो अपार दिल्ली है और ए नवलबा पर भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है।
0: कुछ नहीं करे
1: हाँ अपारे नवलबा 2008 रे ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 रे लंदन ओलंपिक में रजत पदक लाया। उन अलावा अपारे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है नी उनमें स्वर्ण पदक भी जीती।
0: वाह भाई वाह क्या नहीं क्या होने तुकमो लाया तो भगवान ने हाजिर ताजा रखे आने कोटि कोटि बधाई है और बड़े है जो आप जेड़ा पहलवान तैयार करता रहे बड़े
1: बड़े नवलबा आज दिन अपारे जन्म हुए विलास राव देशमुख जीरो अपारे महाराष्ट्र होता और एक राजनेता है अपारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रियोड़ा और अपारे 15वीं लोकसभा में मंत्री भी रियोड़ा।
0: ठीक ठीक है भाई देखे के राजकाज है जो हमारी और बात करी लोगों की सेवा करी तो आने कहूँ है मंदिर भूल चढ़ावा और कोटि कोटि नमन करा बड़े
1: भले नवलबा आज दिन अपारे जन्मदिन है अरुणा राय जीरो अपारे नवलबा चन्नई है और एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है अपारे पहला यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करती। उन अलावा नवलबा अपारे भारत में सूचना रो जिको अधिकार है नी उन यानी लागू करने वास्ते अपारे अजमेर ब्यावरू आंदोलन की शुरुआत करी होती।
0: अरुणा राय
1: हाँ।
0: करी करी था है भाई अरे बड़ी जग जावा काम करिया मोटी कह नहीं कह भारतरी हैंगू कह के ऊंची सेवा में नौकरी चाकरी करी तो भगवान ने हाजा ताजा रखे और भले ऐसो का कह नहीं लोग अरे भलेरा काम करता रहे बड़े
1: बड़े नवलबा आज दिन अपारे जन्म हुए सरताज सिंह जीरो अपारे उज्जैन मध्य प्रदेश हुआ और अपारे मध्य प्रदेश में वन मंत्री रियोड़ा उन अलावा अपारे लोकसभा भी 3 बार सदस्य रियोड़ा।
0: ठीक है भाई देखे अपने राजनीति में सेवा करी तो आने कहू है जो कोटि कोटि नमन करा और मंदड़ेरा फूल चढ़ाऊं बड़े
1: बड़े नवलबा आज दिन अपारे जन्म हुए छगन राज चौपासनी वाला।
0: छगन लाल जी चौपानी वाला हाँ भाई क्रांतिकारी
1: हाँ अपारे नवलबा जोधपुर हाँ
0: जोधपुर हाँ चौपानी गांव रह रहे नाला और देश की आजादी में सिपाही हाँ जुल्म अत्याचार सहन करिया और भाई देखे के अपनी है जो कह नहीं जोधपुर में आजाद करान किया हाँ है जो कह नहीं बिरला मिनक धरती माते जल में नहीं हैंगर भलो है भाई तो छगन लाल जी चौपानी वाले ने वाणा ने है जो को कह नहीं कोटि कोटि नमन है और मंदड़ेरा फूल चढ़ावन पर बातें फोर धोक देवा है भाई शीला।
1: हाँ नवलबा
0: मैंने थारो नाम मोड़ो याद आयो
1: क्यों नवलबा
0: पात्रो पड़ गो है
1: तो नवलबत है इलाज बिलाज करो आप
0: मैं इलाज करेड़ मारो जो इलाज तो
1: नवलबत है सुबह इंसान मार नाम याद तो लिखो याद करो 5 बार बोलो सुबह
0: यूं
1: हाँ
0: क्यों भूलियो कौन हिलाड़ी मात घनी होना होना मोटी
1: तो नाव की कर भूलिया
0: भूल गया तो भूल वो जो 5 रो पड़ गो
1: मैं वही नवलबा क्या पर रात रा होड़ो फैला है नी जिको दिन में काम करा नी मैं सब याद करा जन याददाश्त तेज होए
0: ओ लिस्ट बना लो
1: हाँ
0: बड़ा भाई लिस्ट बना उठ दे दो करान दिन रो करान कल रात रो करा हाजी बात है मैं यूं है कि भाई देखे तावड़ो घणो पड़े है
1: हाँ।
0: और मैं तो मालिक करे मैं भर जा तो कह थोड़ी ठाट पड़ जा तो भाई देखे के मैं कहूँ भाई के राम पानी दो बरसा दे ओ तो अर्जिश यो कहूँ गीत रो होना यो
1: हाँ।
0: हमें कोई ऐडो गीत रो होना जट क्या ईश्वर अल्लाह दया नहीं है जो को दो धर्मारा लोग नहेंग धर्मारा लोग क्या भाई माने पानी दो बरसाओ पानी दो बरसाओ
1: है नहीं नवलबा
0: हाँ होना भाई
1: होना

0: वाह भाई वही भाई एकदम कह नहीं के हैंगरी हूं भाई वह और कुदरत तो कह नहीं भाई सबारे कह नहीं बरोबर रो कह न्याओ रख है कुदरत रो निजाम है कोई ने भेदभाव नहीं है ठीक है तावड़ो पड़त हैंगवाज पड़े बरसात वे तो हैंगवाज पड़े ही पड़े हैंगर पड़े ठीक है
1: हाँ।
0: रात वे तो हैंगर वाज वे दिन उगे तो हैंगर वाज ले हमें कौन भरे है जो फोत कौन होया
1: आज नवल बापा रे फोत होया श्रीकांत वर्मा जी
0: हाँ।
1: पर छत्तीसगढ़ हुआ
0: हाँ।
1: और हिंदी साहित्य एक कथाकार गीतकार और एक समीक्षक हा
0: हाँ।
1: पर राज्यसभा में भी निर्वाचित हो और पर दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया जी को अखबार है नी उन महीने नी एक पत्रिका होती दीन मान उन्ना भी संवाददाता रही
0: ठीक भाई है जी को क्या नहीं है खबर नवीज यार नेतागिरी कर ली हैंग बात कर कुरान सेवा करी आन फोत होगा तो आने कोटी कोटी नमन है मन डेरा फूल चढ़ाऊ भले
1: भले नवल बाज दिन अपर फोत होया चंपक रमन पिलाई जी पर केरल हाँ और एक क्रांतिकारी हा पर जर्मनी में रहता हुआ नी भारत री आजादी री लड़ाई लड़ी और अपर जिम टाइम प्रथम विश्व युद्ध हो नी उम टाइम है नवल बापर इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी री स्थापना करी
0: अरे करी भाई देश आजाद कराउन में कह नहीं कोई कह कह उतरा दे भारत को होनी दिखना दे भारतीय भेड़ो हो
1: हाँ।
0: और जर्मनी में वो जापान में वो कटी हो तो तू मदद ले ले अंग्रेजा ने दोरा घना तू काटिया तो ऐडा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके आरानी कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावान पर बातें बहुत धोख देवा बड़े
1: भले नवलबा आज दिन अपर फोत होया कुंवर पाल सिंह गिल जी अपर नवलबा पंजाब हुआ और पंजाब अपर पुलिस महानिर्देशक रियोड़ा और अपर पंजाब में नी आतंकवाद रे जिको नी
0: खात्म करियो
1: आतंकवाद ने नियंत्रित करने रो श्रेय ने दियो जावे
0: हाँ जी बात है क्यों बीचे गदर होगो नी
1: हाँ।
0: गदर हो तो कई है जो कह नहीं के भाई कई देश विरोधी ताकत है
1: हाँ।
0: देखो आप रो काम कर ढुकी पड़े कह नहीं भारत भूम मत है कह बचाऊ नाला ही है आ तो बे है जो कह नहीं साहित्य कायम कराई और जेका कह नहीं रस तो भूलूड़ा मिन खाबा ने है जो कह नहीं हमजा हमजून मुख्य धारा में लाया तो ऐडा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके तो गिल साहब ने कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा और भाई हमें मारे मंदरी बात करो कोनी ये कोई
1: अर्जेंसी
0: होना हो कन
1: भाई।

0: में लोगो
1: है नी ठंड होगो
0: हाँ हमें गियर्स है आज
1: हाँ।
0: तो थारे मन चावे जड़ो है जो कैंजेटरी गियर्स है जो बढ़िया है जो रसोड़ो तैयार करो और हूँ फेर दू माड़ा माड़ा फेर बैठो हूँ जिते थारे कहनी मन जानिया जिको थारे कहनी के बड़ी बड़ी करती है जिको जान थारे
1: तो बड़ी मन बनान जी हाँ
0: बनान बनान जी माँ और थे तैयार कर लो दोई और
1: हाँ।
0: हमें देखे तारा ही खासा ऊंचा आएगा है और है जिको अंदाजी पड़गो है प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरो शीला भाई शरण लेवा ही राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय ठीक 8 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहला गीत जरा हटके जरा बचके फिल्म से।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत वेदा फिल्म से। आवाजें अमाल मलिक की हैं और उनका साथ दे रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। बोल लिखे हैं कुणाल वर्मा ने और धुन से सजाया है अमाल मलिक ने ही।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत रेड टू फिल्म से। आवाज़ें परंपरा और सचेत की है, बोल लिखे कौसर मुनीर ने और धुन से सजाया सचेत और परंपरा ने।

राग पटेल की आवाज, वरुण ग्रोवर के बोल और MM करीम का संगीत। फिल्म का नाम RRR।

शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन से सजाया प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत बच्चन पांडे फिल्म से। बी प्राक की आवाज़, बी प्राक की धुन और जानी की बोल।

0: जुबिन नौटियाल के गाए इस मिशन मजनू फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों

0: में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय

0: राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केन्द्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए

0: छह महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साई रमुजतबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
5: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
6: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।

0: good night.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुने सुगम संगीत।

सोनिका शर्मा के स्वरों में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगली रचना लता मंगेशकर के स्वर में।

लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला गीत स्वर्ग नर्क फिल्म से।

0: अरे नहीं नहीं
1: अरे बाबा क्या
0: नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन।
2: ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन से सजाया राजेश रोशन ने।
3: तो

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत जीवा फिल्म से आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये दो गाना अभी आपने सुना हमराज फिल्म से। आइए सुनते हैं अगला गीत एतबार फिल्म से आशा भोसले और भूपिंदर के स्वर में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आपकी पसंद के फिल्मी गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पहली फरमाइश आई है ईमेल के द्वारा, माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम से। फिल्म का नाम है प्रिंस। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर ये गीत।

इस गीत के लिए एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। इसके लिए फरमाइश आई है पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा भुरांडे, अनुश्री भुरांडे, धनुषी भुरांडे और बल्लार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े की। तो आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के लिए और ईमेल प्राप्त हुआ है हमें बिहारी कॉलोनी शादपुरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना का।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के इस गीत के लिए एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, मौताला महाराष्ट्र से। और भी बहुत सारे फरमाइशी ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो आइए देखते हैं अगला ईमेल किस गीत के लिए है। अगला गीत हमने लिया है गोपी फिल्म से, फरमाइश की है ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी जिला नांदेड़ से, मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका, अजय पाटिल, बेबी आर्या पाटिल, प्रणीता, विजय पाटिल, समर्थ माउली पाटिल और भी बहुत सारे साथी। पहले आइए शुरू करते हैं ये गीत।

एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, और आइए सुनते हैं अगला गीत कोरा कागज़ फिल्म से। कोरा कागज़ फिल्म से ये गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगला ईमेल आया है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और भी बहुत सारी अनंता बागडे और बहुत सारे और भी फरमाइश करता है। शुरू करते हैं ये गीत और सुनवाते हैं उनके नाम भी साथ ही साथ।

इस गीत के लिए फरमाइश दी अनंत वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार काम गांव से।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लव मैरिज फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर की है और उनका साथ दे रहे हैं। लता मंगेशकर के साथ ये गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और इसको सुनने की फरमाइश की है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और भी इनके साथी। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर ये गीत।

अगला गीत हमें सुनने के लिए ईमेल भेजा है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। श्रोता है उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका परिवार। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर बेताब फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहा था शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाऊ स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।

और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने भी। आइए सुनते हैं अगला गीत गोविंद वैष्णव और उनकी फरमाइश पर। वो सुनना चाहते हैं उमराव जाओ फिल्म का ये गीत,

ग्राम लसूड़िया से तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोपमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी से।

गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल प्राप्त हुआ था गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। सूरत गुजरात से भी हमें मेल मिला था जिया, अनामिका, प्रिया, प्राची, गौरव, संजू और उनके सभी परिवार वाले। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जशान खान। दो रास्ते फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। अगले गीत की फरमाइश आई है हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और इस गीत को और भी सुनना चाहते हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। तो आइए सुनवाते हैं इन सभी की पसंद पे चोर मचाए शोर फिल्म से ये गीत।

एक और आखिरी ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, आखिरी फरमाइश हम कह सकते हैं। नया दौर फिल्म का दो गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत, और सुनना चाहते हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित, और भी बहुत सारे इनके साथियों ने लिखा है। आइए सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के लिए एक और फरमाइश हमें मिली थी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। हमें खेद है ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं, इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय के बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप

0: में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. सेंसर

0: Rangers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
1: Medium wave 564.97 meter, यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर पहली सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।